मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर एवं एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 29वीं तिथि तदनुसार 19 जून सन 2026 प्रातः की 5:58 और 36 सेकंड हुए हैं। इसी के साथ हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। समाचारों के तुरंत बाद FM बैंड 103.5 मेगा हर्ट्ज पर आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रमों का रिले।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन

0: आगमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वांस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन। जिंदगी एक आईना है, जितना मुस्कुराओगे उतना ही खूबसूरत दिखेगा। ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

प्रभु भक्ति न केवल ईश्वर की आराधना बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। यह हमारे अंदर असीम शांति, मानसिक स्थिरता और सकारात्मक दृष्टिकोण देती है। सच्चे मन से की गई भक्ति हमारे अंदर प्रेम, करुणा और धैर्य जैसे सद्गुणों को विकसित कर जीवन को सही दिशा देती है।

भक्ति अहंकार को नष्ट कर व्यक्ति को विनम्र और परोपकारी बनाती है। किसी भी परिस्थिति में विचलित न होने की आंतरिक शक्ति प्रदान करती है ईश्वर की भक्ति।

हे ईश्वर, कण कण में तेरा ही वास है, तू ही मेरी सच्ची आस है। भटक रहा था इस जग में मैं, मुझ में ही तेरा विश्वास है।

हे प्रभु, ज्ञान का दीपक जलाकर तुमने ज्ञान का अंधेरा अज्ञान का अंधेरा मिटाया है। सही और गलत का फर्क बताकर हमें जीना सही सिखाया है।

अंधकार में भटके जब हम, हे प्रभु राह दिखाने वाले तुम हो, मुश्किलों से लड़ना सिखाकर हिम्मत बढ़ाने वाले तुम हो।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान।
1: एपिसोड नंबर 186 186।

भरत अपनी माता कैकेयी के कठोर आचरण से क्षुब्ध होकर आत्मग्लानि की आग में जल रहे हैं। पति समेत पूरे कुल का सर्वनाश कर डालने वाली माता की कोक से जन्म लेना उनके लिए घनघोर पातक सिद्ध हुआ है। पश्चाताप की ज्वाला शांत नहीं होती। मन में ये धारणा पुष्ट होती जा रही है कि उनसे बड़ा पापी इस जगत में कोई नहीं है। शत्रुघ्न भी माता की कुटिलता सुनकर जल रहे हैं, किंतु उनका वश नहीं चलता कि क्या करें, कि तभी कुबड़ी मंथरा भांति भांति के सुंदर वस्त्रों और आभूषण से लदी फदी उनके सामने आ गई। शत्रुघ्न का क्रोध अपनी सीमा पार कर गया, मानो आग को आहुति मिल गई हो। उन्होंने उसके कुबड़ पर जोर से एक लात मारी। चीखती चिल्लाती मंथरा जो धरती पर गिरी तो कुबड़ फूट गया। शत्रुघ्न ने झोटा पकड़ उसे घसीटना शुरू किया कि तभी भरत ने उन्हें शांत करते हुए मंथरा को उनकी पकड़ से छुड़ा दिया। पश्चाताप और ग्लानि की आग को शीतल करने के लिए तब दोनों भाई माता कौशल्या के पास पहुंचे। शोक और संताप से कौशल्या का शरीर सूख गया है। लगता है जैसे सोने की कल्पलता को पाला मार गया हो। भरत और शत्रुघ्न को देख उन्हें हृदय से लगाने को वो दौड़ी, किंतु मूर्छित होकर गिर पड़ी। भरत उनके चरण पकड़ विलाप करने लगे। कभी तो वो माता कौशल्या से दिवंगत पिता वनवासी राम लक्ष्मण तथा सीता के दर्शन करा देने की विनती करते हैं, तो कभी माता कैकेयी की करतूत पर सिर धुनते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों और भाइयों, राम राम। भाइयों, आज कृषि की बातों में चर्चा करेंगे शक्करकंदी की काश्त के बारे में। भाइयों देखो, जो शक्करकंदी हमारे किसान भाई पैदा करना चाह रहे हैं और उन्होंने पहले ही इसके बारे में सोच भी रखा होगा, क्योंकि उसकी जो प्यो तैयार करनी पड़े है और जो उसकी नर्सरी जो हम तैयार कर रहे हैं बेलों के लिए, वो हमारी अच्छी हो जानी चाहिए, क्योंकि वो मार्च अप्रैल के महीने में बोई जा है। वो तो हमने पहले बिजाई कर दी होगी और निश्चित रूप से जो भी किसान भाई इसमें लगाना चाहे शक्करकंदी, तो वो उनकी बेल भी ज़रूर तैयार होगी होंगी, क्योंकि जो रुपाई का इनका समय है शक्करकंदी का, वो जून से लेके जुलाई का जो महीना है वहाँ तक हम इसकी रुपाई कर सके हैं। जिसमें हम रुपाई कर रहे हैं उसमें हमने एक बात का ध्यान रखना है कि भाई 30 से 40 सेंटीमीटर जो लंबी बेल हैं, यानी कि जो कलम हैं, उनके ऊपर कम से कम 3 या 4 गांठ हर एक के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और जो कलम है वो हमने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लगानी है, यानी कि 2 फुट के आसपास। और जो हम डौली से डौली का फासला रखेंगे उसमें हम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने लगानी है, वो यानी कि एक कलम से दूसरी जो कलम है उसका 60 सेंटीमीटर की दूरी, और जो डौली है उस पर हमने 30 सेंटीमीटर का फासला हमने रखना है। वो बीच का जो फासला है वो रहेगा। इसको कई प्रकार से लगाया जा है। इसमें 2 ढंग मुख्य रूप से वो हैं। एक तो जो कलम है उसके ऊपर किस तरीके से, यानी कि किनारे हैं जो डौली के, वो उसमें जो गांठ हैं जमीन के बाहर भी निकली हुई होनी चाहिए, और जो बीच की दोनों गांठ हैं वो ज़मीन के अंदर दबी होनी चाहिए। कलम का जो नीचे वाला सिरा है वो 2 गांठ तक ज़मीन के अंदर दबा हुआ होना चाहिए, और जो दूसरा रह गया ऊपर वाला सिरा, वो कम से कम 2 गांठ का होना ज़मीन से ऊपर बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर हम देखें कि जो कलम है वो हमारे किसान भाई समझदार हैं, वो शाम के समय पर लगाए हैं, और इस बात का ध्यान रखना भाई हमने देखो लगाते ही उसके अंदर तुरंत पानी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लो जो उसकी गांठ लगाई गई है वो जब जर्मिनेशन जब जमाव पकड़ेंगी जब उसके अंदर हम पानी दे देंगे। ये तो बात थी हमने जो लगानी है उसके बारे में। बात आ जाए है कि इसमें खाद और जो उर्वरक है वो हमने किस तरीके से डालने। गोबर की अच्छी गली सड़ी हुई जो खाद है वो 10 टन 1 किलो के हिसाब से हमने रोपाई के 2-3 सप्ताह पहले डाल देनी है, और उसमें अच्छे तरीके से जब हम मिला देंगे उसके अंदर सही वो जब रम जाएगी तो वो बहुत अच्छा काम करेगी। इसमें ध्यान ये रखना भाई गोबर की गली सड़ी हुई खाद होनी चाहिए, कच्ची खाद नहीं होनी चाहिए। और उसमें एक ज़रूरी बात तो ये है भाई, मिट्टी पानी की जिन भाइयों ने जाँच करवा रखी है वो तो उस हिसाब से उर्वरक दें। और एक सामान्य खेत की यदि हम बात करें तो 32 किलो नाइट्रोजन और 16 किलो फास्फोरस, जिसमें लगभग 216 किलो के आसपास SSP हो जाएगा, सिंगल सुपर फास्फेट, और 32 किलो पोटाश 1 किलो के हिसाब से हमने डालना है। ये इसमें हमने फास्फोरस की और जो पोटाश की मात्रा है वो पूरी डालनी है, और जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा है वो रोपाई के समय पर डालनी है, और जो शेष आधी बचगी वो रोपाई के 1 महीने के बाद हमने डालनी है। इस ध्यान बात का ध्यान हमने रखना है। इसमें आगे चाल के भाइयों जो नुलाई है गुडाई है या मिट्टी चढ़ाने का काम है वो काम भी हमने करना पड़ेगा। वैसे शक्करकंदी काफ़ी तेज़ी से बढ़े है और बहुत कम चांस हो है इसमें खरपतवार होने के, लेकिन जो शुरुआती स्तर है जब तक ये अच्छी लंबी बेलें नहीं होती उस समय तक जैसे साठी जैसे खरपतवार हैं उनको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी इस फसल के ऊपर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। रोपाई के 20 से 40 दिन के अंदर, एक बार तो मान लो हम 21 दिन पर कर दें, फिर दूसरा 41 दिन के बाद कर दें, 2 जो नुलाई गुडाई है वो हमने करनी ज़रूरी है, और बाद में जैसे 40 दिन के बाद तो फिर जो मिट्टी है वो लगाने का हमारा समय आ जाएगा, वो फिर हम बाद में लगा लेंगे। बेलों को पलटना है जहाँ भी ये ज़मीन से छुएं या कोई अलग से जड़ बनाएं तो उसमें शक्करकंदी का जो आकार है वो छोटा रह जाएगा, इसलिए हमने बेलों को 2-3 बार उल्ट पुलट करने और एक जगह पर एक ही जड़ उसकी रखनी है, ताकि जो बेल हैं वो लंबाई ले सकें, और जो समय पर हमने सिंचाई करते रहना है। इन बातों का ध्यान करना है, जो हमारे किसान भाई शक्करकंदी की फसल लगाएं इन बातों का ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से एक आजा सके वे वो अच्छे उससे पैदावार ले सके। भाइयों।

0: करणीय क्रयण अनिवार्यता प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दिशा निर्देशाः सहैव स्वचालित मार्गेण शत प्रतिशतं वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशं करोति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वो साझा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली NEET UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारियों को कैसे सीमित किया जा सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने कहा है कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी कहा कि ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर जहाजों का आवागमन सामान्य हो गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार 3री जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 से गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप ए में मैक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को

0: the FIH Women's Nations Cup in New Zealand yesterday. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

शाम 5:10 पर विशेष सभा में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार मेला 2026 में संबोधन का सीधा प्रसारण, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

देर शाम 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सरकार के 12वें वर्ष पूरे होने से संबंधित विभिन्न विषयों पर एक विशेष श्रृंखला में पर्यावरण कार्यक्रम। वार्ताकार होंगे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव भूपेंद्र यादव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

समसामयिक चर्चा के साथ फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुबह सवेरे का प्रसारण समय रहेगा प्रातः 7:25 पर।

शाम 6:20 पर कार्यक्रम कृषि जगत में आप सुनेंगे कृषि संबंधी समस्या व सुझाव विषय पर फोन इन कार्यक्रम का पहला प्रसारण। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर करम सिंह मलिक।

प्रातः 8:30 पर लोक संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गायक कलाकार संतोष नागिया को। कार्यक्रम सुगम संगीत का प्रसारण समय रहेगा 8:25 पर। दोपहर 12:30 पर आप तक पहुंचेगा प्रायोजित कार्यक्रम NCRT एपिसोड संख्या 1310।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम एक फिल्म से का आनंद आप लेंगे रात 9:15 पर। फिल्म संगीत कार्यक्रम प्रसारित होगा रात 7:45 पर। दोपहर 1:10 पर आप आनंद लेंगे पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग प्रसारित होगा प्रातः 9 बजे। रब से कुछ ही देर में प्रातः 7:15 पर गांधी चर्चा में आज आप सुनेंगे

0: की विषय पर गांधी जी के विचार प्रस्तुति करता होंगे यज्ञदत्त मिश्र। ये थी कार्यक्रम रूपरेखा, आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी चर्चा। गांधी चर्चा में आज आपको सुनवा रहे हैं सादगी विषय पर गांधी जी के विचार, प्रस्तुति करता है यज्ञदत्त मिश्र।
1: आकाशवाणी रोहतक से प्रस्तुत है गांधी चर्चा।

मैंने भोग भोगना तो आरंभ किया पर वह टिक न सका। घर का ठाट बाट जमाने में मुझे उस पर मोह नहीं उपजा, अतः घर बसाने के साथ ही मैंने खर्च घटाना शुरू कर दिया। मैं जिससे कपड़े धुलवाता था, एक तो उससे खर्च बढ़ता था, दूसरा वो कभी वक्त पर कपड़े नहीं देता था। इससे 2-3 दर्जन कमीजों और इतने ही कॉलरों में से मेरा काम नहीं चलता। कॉलर रोज बदलता, कमीज रोज नहीं तो एक दिन बीच में देकर बदलता था। इससे दोहरा खर्च पड़ता था। ये सब मुझे बेकार लगा, अतः धुलाई का सामान जुटाया। धुलाई कला पर पुस्तक पढ़कर धोना सीखा, पत्नी को भी सिखाया। काम का बोझ कुछ बढ़ा तो ज़रूर, पर नई चीज़ थी, इसे करने में मज़ा आया। मेरा पहला अपने हाथों से धोया हुआ कॉलर मुझे कभी नहीं भूलेगा। उसमें माड़ी अधिक लग गई थी, स्त्री काफ़ी गर्म नहीं थी। कॉलर जल जाने के डर से स्त्री को भली भांति दबाया नहीं। वही कॉलर लगाकर मैं कचहरी गया और वहाँ बैरिस्टर के विनोद का साधन बन गया। पर ऐसा मजाक सह लेने की शक्ति उस समय भी मुझमें यथेष्ट थी। एक मित्र ने पूछा, क्या कपड़े धोने वालों का अकाल है? मुझे कपड़े धोने वाले का खर्च असह्य लगता है। जितनी कॉलर की कीमत उतनी धुलाई दो, ऊपर से कपड़े धोने वाले की गुलामी करो। इससे तो मैं अपने हाथ से धो लेना अच्छा समझता हूँ। स्वावलंबन की एक खूबी मैं मित्रों को समझा न पाया। मैं कह सकता हूँ कि अंत में कपड़े धोने के धंधे में अपने काम भर की कुशलता मैंने प्राप्त कर ली। घर की धुलाई बाहर की धुलाई से किसी तरह घटिया नहीं थी। कॉलर की सख्ती और चमक भी बाहर के धोए हुए कॉलर से 19 नहीं थी। गोखले के पास स्वर्गीय महादेव गोविंद रानाडे के प्रसाद स्वरूप एक चादर थी। इस चादर को वह बड़े जतन से रखते थे। जोहन्सबर्ग में उनके सम्मान में जो भोज दिया गया था वह सम्मेलन का महत्वपूर्ण अवसर था। दक्षिण अफ्रीका में यह उनका बड़े से बड़ा भाषण था, अतः उस अवसर पर उन्हें उस चादर का उपयोग करना था। उसमें शिकन पड़ी हुई थी और उस पर स्त्री करने की आवश्यकता थी। बाहर से धुलवाना, तुरंत स्त्री करा देना संभव न था। मैंने अपनी कला का उपयोग करने की इजाज़त मांगी। आपकी वकालत का तो मैं विश्वास कर लूँगा, पर इस चादर को धोने की आपको इजाज़त नहीं दे सकता। इस चादर पर आपने दाग लगा दिया तो इसकी कीमत आप जानते हैं? ये कहकर बड़े उल्लास से प्रसाद की कथा मुझे कह सुनाई। फिर मैंने प्रार्थना की और दाग न लगने की जिम्मेदारी ली। मुझे स्त्री करने की अनुमति मिली। मुझे अपनी कुशलता का सर्टिफिकेट मिल गया। अब दुनिया मुझे सर्टिफिकेट न दे तो उससे क्या होता है? मैंने तो कम से कम कपड़े धोना सीख लिया था। हजामत तो विलायत जाने वाले सभी हाथ से बनाना सीख ही लेते हैं, पर बाल छटाई कोई सीखता हो इसका ख्याल मुझे नहीं। प्रिटोरिया में मैं एक बार एक अंग्रेज़ हजाम की दुकान पर पहुँचा। उसने मेरी हजामत बनाने से साफ इनकार कर दिया और इनकार करते हुए जो अपमान किया वह घाते में रहा। मुझे दुख हुआ। मैं बाजार पहुंचा, बाल काटने की कैंची खरीद ली। घर आकर शीशे के सामने खड़े होकर बाल कतर डाले। जैसे तैसे बाल कट तो गए, पर पीछे के बाल कटने में बड़ी कठिनाई हुई। सीधे नहीं कटे। कचहरी में खूब कह कहा लगा, तुम्हारे सिर पर चूहा तो नहीं चढ़ गया था? मैंने कहा, नहीं जनाब, मेरे काले सिर को सफ़ेद हजाम

कैसे छुए, इसलिए जैसे तैसे अपने हाथ से काटे बाल मुझे अधिक प्यारे हैं। इस उत्तर से मित्रों को अचरज नहीं हुआ। सच पूछिए तो सज्जाम का कोई दोष नहीं था। वह काले चमड़ी वालों के बाल काटने लगे तो उसकी रोजी मारी जाए। स्वावलंबन और सादगी के शौक ने आगे चलकर तीव्र रूप प्राप्त किया। उसकी जड़ तो मेरे अंदर आरंभ से ही थी, उसे फलने और फूलने के लिए केवल सिंचाई की आवश्यकता थी, वह मिल गई। अभी आपने सादगी विषय पर गांधी जी के विचार सुने और अब प्रस्तुत है बापू का प्रिय

0: इसके साथ ही आज का गांधी चर्चा का यह अंक यहीं पर संपन्न हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी चर्चा में सादगी विषय पर गांधी जी के विचार। प्रस्तुतिकर्ता थे यज्ञदत्त मिश्र। आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

कार्यक्रम सुन रही सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुबह सवेरे में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को आपकी रेडियो साथी सोनिया शर्मा का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं इस गीत के साथ।

माटी को जो कुम्हार सा सुंदर आकार दे देते हैं, जीवन की हर मुश्किल को पल भर में पार कर देते हैं। किताबों के ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी हमें सिखाते हैं, ऐसे महान गुरु ही जीवन का सच्चा अर्थ बताते हैं। स्वार्थ से परे होकर जो सदा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, गलतियों पर डांटकर भी वे हमसे ही बहुत प्यार करते हैं। ईश्वर से भी बड़ा दर्जा हमारे शास्त्रों में जिन्हें मिला है, उस गुरु के चरणों में ही सारा ज्ञान का खजीला है। चाहे उम्र कितनी भी बीत जाए या बदल जाए ये ज़माना, गुरु का स्थान सदा सबसे ऊंचा, यही है जीवन का तराना। जी हाँ श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं गुरु हरगोबिंद साहिब जी की जयंती, जो कि सिखों के छठे गुरु थे। इनकी जयंती प्रकाश पर्व सिख धर्म की अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। इनका जन्म आज के ही दिन यानी 19 जून वर्ष 1595 को गुरु की बड़ाली जिला अमृतसर पंजाब में माता गंगा और पांचवें गुरु चंदेव जी के घर हुआ। 11 वर्ष की आयु में अपने पिता गुरु अर्जन देव जी की शहादत के बाद इन्हें गद्दी सौंपी गई। इन्होंने मेरी सांस्कृतिक जो सत्ता और पीरी आध्यात्मिक सत्ता का सिद्धांत दिया और दो तलवारें धारण की। सैन्य परंपरा की अगर बात करें तो मुगलों के अत्याचारों से सिख पंथ की रक्षा के लिए इन्होंने सिखों के शस्त्र विद्या, मार्शल आर्ट और घुड़सवारी में प्रशिक्षित इन्होंने किया। इन्होंने अमृतसर में सर्वोच्च सिख संस्था अकाल तख्त सच्चे सिंहासन का निर्माण करवाया। इन्होंने 28 फरवरी वर्ष 1644 को किरतपुर साहिब में अपनी अंतिम सांस ली। इनकी जयंती आज हम मना रहे हैं। नानक शाही पंचांग के अनुसार इनका प्रकाश पर्व हर वर्ष जून के महीने में मनाया जाता है। आज का ये दिन गुरुद्वारों में विशेष दीवान सजते हैं, अखंड पाठ के भोग डाले जाते हैं और लंगर का आयोजन किया जाता है। इनके द्वारा दी हुई शिक्षा जो हमें समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। इनकी जयंती पर गुरु हरगोबिंद साहिब जी की जो जयंती आज हम मना रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि भावपूर्ण हमारी तरफ से। और गुरु के द्वारा दिए हुए मार्ग पर हमें हमेशा चलना चाहिए, क्योंकि गुरु हमेशा ही सत्य का मार्ग दिखाते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जब भी मुश्किल समय आता है, इनके द्वारा दी हुई शिक्षा हमें एक अंदर से विश्वास दिलाते हैं कि हम इस मुश्किल दौर से गुजर सकते हैं और एक आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल को पा सकते हैं।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: अंधेरी गलियों का वो खौफनाक मंजर, रूह को चीर गया वो तीखा खंजर, मासूमियत को पन्नों की तरह फाड़ा गया, एक जिंदा ख्वाब जो जीते जी गाड़ा गया। वो चीख जो हलक में ही दबा दी गई, सपनों की साख के पीछे छुपा दी गई, कपड़ों के नाप पर उंगलियां उठाई गई, सच्चाई हमेशा लोक लाज में दबाई गई। पर कब तक सहेगी वो ये जुल्म और सितम, कब तक आंसुओं से भी

ये रहेंगे कदम। गुनहगार वो है तो फिर वो क्यों शर्माए, क्यों अपने ही वजूद पर वो आंसू बहाए। अब तोड़ना होगा इस गहरे मौन को, पहचानना होगा समाज के उस हैवान को। ये जंग सिर्फ उसकी नहीं, हम सब की है। इंसान की ये आवाज़ अब हर घर की है। उठो उठो कि अब तुम्हें खुद अपनी ढाल बनना है। कमज़ोर नहीं, अब सुलगता हुआ सवाल बनना है। जी हाँ श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं संघर्ष के दौरान यौन हिंसा के कारणों उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो हर साल 19 जून को मनाया जाता है, यानी आज के ही दिन। इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो सशस्त्र संघर्षों और युद्धों के दौरान महिलाओं, बच्चों, पुरुषों के खिलाफ होने वाले यौन हिंसा, जिसमें बलात्कार, यौन दास्ता आदि के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका एक उद्देश्य है। इसकी शुरुआत की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा 19 जून वर्ष 2015 को यह दिवस घोषित किया गया था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अगर आपको बताएं तो आज की यह तारीख 19 जून वर्ष 2008 को सुरक्षा परिषद द्वारा पारित संकल्प 1820 की याद में चुनी गई, जिसमें यौन हिंसा को युद्ध में रणनीति और शांति स्थापना में बाधा के रूप में निंदा की गई थी। यौन हिंसा जो कि किसी व्यक्ति की इच्छा या सहमति के बिना किया गया कोई भी अवांछनीय यौन व्यवहार है, यह शारीरिक, मौखिक और मनोवैज्ञानिक हो सकती है। यह अपराध शक्ति के दुरुपयोग, लैंगिक असमानता और गलत सामाजिक मानदंडों के कारण होता है। इसमें सहमति का अभाव होता है, जो कि यौन हिंसा का मुख्य कारण बनता है। किसी भी गतिविधि में पीड़ित की स्पष्ट सहमति का न होना। अपराधी अपनी दबी हुई यौन कुंठा और विकृत मानसिकता के कारण दूसरों के सम्मान और शरीर को क्षति पहुंचाते हैं। यौन शिक्षा का अभाव और अधिकारों के प्रति जागरूकता का न होना भी इन अपराधों का एक बड़ा कारण बनता है। बचपन में दुर्व्यवहार का शिकार हुए लोग या हिंसा माहौल में पले बड़े लोग अक्सर आगे चलकर ऐसे अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। तो हमें सजग रहना है, सतर्क रहना है, और यौन हिंसा से जो कि शिक्षा होती है, उसका जो अधिकार है, उसके प्रति हमें स्वयं भी जागरूक होना है और समाज को भी जागरूक करना है।

श्रोताओं, इसी के साथ आज हम राष्ट्रीय पठन दिवस भी मना रहे हैं, जो कि प्रतिवर्ष 19 जून को ही मनाया जाता है। आज के दिन यह दिवस केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कहे जाने वाले पी एन पाणिक्कर की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों, विशेषकर युवा पीढ़ी के बीच पढ़ने की आदत और पुस्तकालय संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस दिवस के इतिहास की अगर बात करें तो पुथुलवाईल नारायण पाणिक्कर ने केरल के गांव में पुस्तकालयों का एक विशाल नेटवर्क स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। इनके इसी प्रयास से राज्य में साक्षरता आंदोलन की शुरुआत हुई। इनके निधन के बाद पहली बार 19 जून वर्ष 1996 को इनकी पुण्यतिथि पर पठन दिवस मनाया गया। तब से हर साल यह दिन राज्य और राष्ट्र स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को किताबों के महत्व के बारे में जागरूक करना। आधुनिक तकनीक और डिजिटल युग में यह दिन पढ़ने की संस्कृति को पुनर्जीवित करने का अवसर प्रदान करता है।

तो श्रोताओं, देश का नागरिक होने के नाते जो कर्तव्य हमारे बनते हैं उसे बखूबी निभाते रहिए। अपना, अपने परिवार का, समाज का, देश का ख्याल रखिए। और इसी के साथ अपनी रेडियो साथी सोनिया शर्मा को दीजिए अनुमति।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को ही कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, तत्पश्चात 8:15 पर समाचार होंगे अंग्रेजी में, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग, करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए, एक दिन नहीं हर दिन, योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
4: पीएम किसान।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
7: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
7: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP 2 गुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी 2 गुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
6: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
8: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने इसे साथ में दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा।
6: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को

0: नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
1: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा, बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुणे जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए।

0: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
1: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
0: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्ता के शब्द है, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल खत्म नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
3: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का रोहतक केंद्र। लोक संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कलाकार संतोष नागिया को।

इसी के साथ हमारा आज का लोक संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है, जिसमें हमारे आज के कलाकार थे संतोष नागिया। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रातः के 9 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक रंग। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का फिल्म संगीत कार्यक्रम एक रंग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो साथी सोनिया शर्मा। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सिर्फ तुम फिल्म के इस गीत के साथ। इस गीत को आवाज़ें दी हैं कुमार सानू और अलका याग्निक ने, समीर के बोल हैं और संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाए आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: तेरे ख्यालों में खोए रहना आदत सी बन गई है, मेरी तन्हाइयों की दुनिया में तू ही इबादत सी बन गई है। चाह बहुत कि छुपा लूँ इस दिल के राज को, मगर हर धड़कन तेरी चाहत की गवाही बन गई है। कसूर फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। ये गीत है, समीर के बोल हैं, धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

कसूर फिल्म से अभी आपने गीत सुना। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कितनी दूर कितने पास फिल्म से। आनंद बख्शी के बोल हैं, कुमार रूप कुमार राठौड़ ने संगीतबद्ध किया है।

रूप कुमार राठौड़ और जय श्री शिवरम की आवाज़ में कितने दूर कितने पास फिल्म से आपने गीत सुना। इस गीत को संगीतबद्ध किया था संजीव दर्शन ने और बोल थे आनंद बख्शी के। प्यार कमज़ोर नहीं, सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारी, इसी से रोशन है ये ज़िंदगी जो है हमारी तुम्हारी। उठो बांधो हिम्मत और लिख दो एक नई दास्तान, तुम्हारी मोहब्बत में ही छिपी है दुनिया जीतने की जान। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं प्रेम रोग फिल्म से। इस गीत को आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने। संतोष आनंद ने इस गीत को लिखा है और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: दिल कितना नादान है, फिल्म से गीत आपको सुनवा रहे हैं। कुमार सानू और अलका याग्निक ने इस गीत को आवाजें दी हैं। राहत इंदौरी की शब्द रचना है और अनु मलिक ने संगीतबद्ध किया है।

मुस्कुरा देते हैं हम यूं ही अक्सर तुम्हें सोचकर, तेरे होने की ये खुशबू इतनी प्यारी और राहत सी बन गई है।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं अजनबी फिल्म से। इस गीत को आवाज़ें दी हैं उदित नारायण और अलका याग्निक ने। शबीर के बोल हैं, अनु मलिक ने संगीतबद्ध किया है। तो सुनते हैं अजनबी फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके बाद 10:05 पर समाचार होंगे अंग्रेजी में, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात फ्रांस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस एवियन पेरिस मैं इसे साथ

0: دور کلیه سواگت کرده فرانس و بارک کی دوستی امرائی.
1: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे, जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूहों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार यात्रा पर रहेंगे। श्री वैष्णव पटना और छपरा में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे पटना के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन से छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशानुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर डीटीएच और न्यूज़ ओन एआईआर पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30:40 हुए हैं। हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब शुरू होते हैं। आरंभ में प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूं विमलेश, नमस्कार।
3: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, ना कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भीड़ में एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
3: आपके सुंदर विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखा है, नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
2: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
3: आगे आपने लिखा है, कारगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
3: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
2: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
3: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है।
2: जी,
3: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
3: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: अजीत जी, आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
0: बिल्कुल।
1: तो आइए बढ़ाते हैं आज की चर्चा को। जी, तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है, इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जहां तक इसके पानी की बात है, यहाँ पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओं, डल का मतलब ही झील होता है, इसलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। ये झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर। ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारे पर समा बांध देता है। श्रोताओं, एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग गार्डन या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते, इसलिए नावों द्वारा यहाँ से वहां ले जाए जा सकते हैं। डल झील में जो तैरते हुए बगीचे नुमा द्वीप हैं, वे मानव निर्मित हैं, जो झील की खरपतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नावों पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। एक बात और श्रोताओं, इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए। श्रोताओं, ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर ये झील बनी कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय परिवर्तन। बहुत पहले हिमालय क्षेत्र में धरती की परतों के उठाव और धंसाव की प्रक्रिया से वहां कहीं पर्वत बने तो कहीं गहरे गड्ढे, ग्लेशियरों की बर्फ पिघली और उनका पानी नदी के रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। श्रोताओं, डल झील का पानी मीठा है। यहाँ भी प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अब ये झील प्रदूषण और सिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। श्रोताओं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन्स की सुंदरता देखते ही बनती है। सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि ये झील कश्मीरी जीवन शैली, संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारी डल झील के बारे में।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है?
1: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
0: हमारे IVRS का नंबर भी नोट कर लीजिए, 8800-440-559। आप हमें यानी CIT NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है गुलीवर की विचित्र यात्राएं।
0: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है।
2: मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार
0: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की
2: एक
0: बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
2: बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। जब मेरी नींद खुली तो अपने मित्र तो मैंने अपने
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था,
0: थोड़ा सा फंबल था।

0: कोई चीज
1: तो आवाज कम कर
0: मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने

मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलिपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं। पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये

0: देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा।
1: मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं।
0: नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सब के बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली, इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय

0: से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: और अब सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम, शीर्षक है बिन्नी का सपना।
2: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: बिन्नी का सपना।
3: अरे तुम्हें क्या हुआ?
4: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
3: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
4: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
3: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती हैं, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
4: तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना।
5: आपने सुना ये प्रायोजित कार्यक्रम मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर DTH और न्यूज़ ऑन AIR पर ये

आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन का एक बजने वाला है, कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार। इसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। फिलहाल वक्त हिंदी समाचारों का है, तो चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
2: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। अपने दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकाडातु परियोजना मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है और कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों का हनन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802827 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था

है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर घरेलू चुनौतियों और आतंकवाद को निरंतर समर्थन देने से ध्यान भटकाने के लिए दुष्प्रचार का आरोप लगाया। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन माह से जुड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चार राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत की जाएगी।
1: कई राज्यों को अलग अलग खरीदी की अनुमति पीएम आशा के तहत हमने देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात, इन राज्यों को मूंग, मसूर, उड़द की खरीदी की अनुमति दी है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर ये खरीदी होगी।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज सिरसा के डेरा बाबा भूमण शाह में आयोजित योग शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने डेरा के गद्दी नशीन बाबा ब्रह्मदास के सानिध्य में वहां मौजूद सैकड़ों लोगों और बाबा के अनुयायियों के साथ मिलकर योग अभ्यास किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा राज्य है जिसने योग को बढ़ावा देने के लिए योग आयोग का गठन किया है। सरकार प्रदेशवासियों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य एवं निरोग जीवन के लिए योग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: हम सब जानते हैं कि दो दिन के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरा विश्व मना रहा है। इस दौरान हमने प्रदेश के लगभग सभी जिलों में योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए हैं और इसी कड़ी में आज का ये योग अभ्यास कार्यक्रम यहाँ बाबा भूमण शाह जी के पवित्र भूमि पर आयोजित हो रहा है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, योग कर्म कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता लाना ही योग है। हरियाणा का एक स्वस्थ, समृद्ध और योगमय राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
0: हरियाणा में 21 जून को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पंचकुला में राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सतपाल शर्मा, विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, विद्यालयों, महाविद्यालयों के विद्यार्थियों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों और शहर की योग से जुड़ी संस्थाओं ने इस मौके पर भाग लिया। इस दौरान योग प्रोटोकॉल के अनुसार सभी योगासनों का अभ्यास भी करवाया गया। हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉ. जयदीप आर्य ने इस मौके पर बताया कि इस वर्ष राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन योग से निरोग हरियाणा थीम पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित इस मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में 11 देशों के लगभग 70 विद्यार्थी भागीदारी करेंगे। हरित योग के चलते प्राकृतिक संरक्षण का भी संदेश दिया जाएगा और एक भव्य प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।
3: यहाँ पर एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जा रहा है, जहाँ विभिन्न योग संस्थाएं अपने अपने कार्यों के विषय में बताएंगी। प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक खेती की बात भी लोगों को बताई जाएगी कि योग भी आवश्यक है और उतना ही आवश्यक आहार भी है। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, तो युक्त आहार की भी हम चर्चा करेंगे।
0: उन्होंने बताया कि इस मौके पर मुख्यमंत्री सहित विभिन्न मेहमानों द्वारा 11 औषधीय पौधे भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हरियाणा में योग को लेकर एक ऐतिहासिक घोषणा भी करेंगे। केंद्र सरकार के गौरवशाली 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हिसार जिले के गांव गंगवा के पीएम श्री स्कूल में रचनात्मक गतिविधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 500 छात्र छात्राओं व जिले के विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों ने भाग लिया। स्कूल प्रांगण में विभिन्न गतिविधियों से जुड़ी हुई स्टॉल लगाई गई। जिला शिक्षा अधिकारी राम रतन ने बताया कि विभिन्न स्कूलों से बच्चों ने अलग अलग थीम पर स्टॉल लगाकर शिक्षित करने वाली रचनात्मक प्रस्तुतियां दी, जिसमें कचरे के सदुपयोग संबंधी स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहा। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया है।
4: जैसे पीएम श्री स्कूल का संचालन हुआ, पहले प्रथम

0: चरण में हमारे डिस्ट्रिक्ट हिसार की बात करें तो 9 स्कूल पीएम श्री थे, परंतु दूसरे चरण में 18 स्कूल हो गए हैं। अब केजीवीवी भी हमारे 2 अपग्रेड हो गए हैं, भिन्न भिन्न जगह पर कॉलेजेज हो गए हैं, तो जो बच्चों को जो है दूर ना जाना पड़े और नजदीक जाकर के बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं।
1: हरियाणा में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए हरियाणा के राज्यपाल और हरियाणा राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कल हरियाणा लोक भवन से 9 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
2: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

किशोर कुमार की आवाज़ में दाग फिल्म का गीत आपने सुना, साहिर के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद थी हमारे इन सुनने वालों की। आप हैं इस्लामपुर बुलढाणा से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, साधना सुमेत दामोदर, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया शुएब नावेद खान, सिंधोली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, चकला बाजार सामाना शहर पटियाला से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हंसमुख जिंदल, मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, विदुल उमरखेड़ से गंगाधर पोपलवाड़, सम्यक प्रियंका लक्ष्मीबाई, स्वरित पोपलवाड़, भारत धुले, मधुबनी बिहार से राजकुमार गुप्ता, विनीता रविराज, गौरव, दरभंगा बिहार से पन्नालाल गुप्ता, शारदा कुसुम, रूपा गुप्ता, कस्बा अग्रवाल मंडी टटेरी से आसिफ अली खान, मोमिना नाज मुस्कान, सादिक अली खान, सारिक अली खान, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजदीप राशि, गोविंदगढ़ माझीवाला से राजू टुटेजा, उर्मिला गुड्डू, जीनू मन्नू, आदित्य भूमि, राखी अमृत पड़वाल, शिव सेठी, स्माइल टुटेजा और बीआर, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दकी, नजमा बेगम, रियाज, रिफाकत रानी, तबस्सुम रुखसार और आसिफ। अगला गीत हम सुनवा रहे हैं अपने इन सुनने वालों के अनुरोध पर। खताएं हैं आपके खिरड़ावाड़ी हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान, सारिका, सुरेखा, आरवी, तन्नवी, वाकोड़ी कलमनूरी से उत्तम जमधाड़े, स्वरा, ललिता असोले, रोहतक से महेंद्र शाह, हरिंद्र शाह, जितेंद्र मानसी, ज्योति बत्रा, वंशिका बत्रा, हिमांशु, कार्तिक गौतम, मलोट कैंप से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, निवान, लखविंदर संधु, महावीर, गुरचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी, जगराव से सुनील पाठक, कमल सुच्चा पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष गव्या मल्होत्रा, रहमानिया महसोल से तलत जहां नाज, फरत जहां नाज, रिफत जहां, नुजहत, वसीम अक्रम, नदीम, शमीम, अमन, भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश साहू, रामा से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, विनोद लखनपाल, बालोद से बसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज ईश्वरराज, प्राची सूर्यवंशी, साधना ठाकुर, बलियाली से दर्शनलाल बंसल, गर्भिश तमन्ना बंसल। आप सभी के अनुरोध पर कटी पतंग फिल्म का गीत सुना रहे हैं, किशोर कुमार की आवाज़ है। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत पद किया है आर डी बर्मन ने। इन सब के साथ आइए हम भी सुनते हैं।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी के लिए है। आप हैं डब्बाली से जेके बकोलिया, सुनीता, संजय, अनिल, मीनू बकोलिया, मटोर से रामदिया, नीलम, अजय, विजय, तमन्ना, बीसलपुर पीलीभीत से विमल वर्मा, नीतू वर्मा, प्राची वर्मा, बक्सर बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, असलम अकरम, अल्ताफ अंसारी, चोहल्दा से संजय ढींगिया, नमन मुस्कान, कुणाल, फ्रांसी से राजकुमार डूडी, सुजीत, प्रमोद डूडी, दुल्हापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्नवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह आपके साथ हैं। खजूरी खास दिल्ली से पृथ्वी सिंह नेगी, सौरभ, गौरव नेगी, मीठी और कुहू, डुमराव से डब्लू अंसारी, सोनम, अदीबा, दानिश, सारिमपुर बक्सर से आसमा खातून, SD अंसारी, मेहताब, आफताब, मेराज अंसारी, और शीतला नगर दुर्ग से ये खत है शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर का। आप सभी के लिए सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर का गाया सौदागर फिल्म का गीत। गीतकार संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: कार्यक्रम का अगला गीत ब्लैकमेल फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं, किशोर कुमार की आवाज है। इस गीत को राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। पसंद आप सभी की है। आप हैं मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, निवान शर्मा। लोनी से नसीमुल इस्लाम गुन्नौरी, प्रकाशवीर राजपूत। बालोद से कमलेश जयपुरिया। भिलाई से अनुश्री, प्रदीप, पिंकी, प्रमिला। रायगढ़ से लालचंद मिश्र, नरेंद्र राम। जमशेदपुर से ये चिट्ठी है हरजिंदर भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत, पप्पी भाटिया की। मुक्तसर से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत, निशु। बराड़ा अम्बाला से रवि राहुल, रणजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत, गुरशपत। प्रमिलागंज आलोट से बलवंत वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश, ऋषि वर्मा। हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू टप्पू। मोहाली से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा। आप सभी के अनुरोध पर ब्लैकमेल फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में गाया हुआ सुनवा रहे हैं।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान
2: पीएम किसान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी के लिए है। आप हैं बलियाली से सुदेश बंसल, प्रवीण, ममता, कमल और गर्विश बंसल। ढाणा नरसान भिवानी से जगदीश चंडालिया, राजबीर, सतीश, केला देवी। बेमेतरा से पूर्णिमा सारथी, पूजा, आरती, भव्या, सुषमा सारथी। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, रेखा, धनेश्वरी। चटोदा सारागांव से सुजान वर्मा, सहोदरा, आयुषी, कृत। लोहगढ़ फिरोजपुर से स्वर्ण सिंगिल, दलजीत, राजदीप, गुरलाल, अविराज, गुरमान, गुरनूर। केलंगा से सुंदरपाल कौशिक, अभी, नीशु, देबू, परी, पिहू, पाखी कौशिक। रोपड़ से हरदेव मीका, बलविंदर जैतक, विक, बुच्चो कैंथिया। पंजाब से प्रेम जौड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, दीपेंद्र, वीरेंद्र, सिमरन, एकम, दमन और अभिजीत। आप सभी चाहते हैं सुनना अपराध फिल्म का गीत। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें आप सुनेंगे। इंदिवर के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

ये था अपराध फिल्म का गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें आपने सुनी। श्रोताओं, आपको हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आपके विचारों का, सुझावों का, मार्गदर्शन का, आपकी सटीक टिप्पणियों का हमारे फोन इन कार्यक्रम श्रोता मंच में स्वागत है। आप हमें इन टेलीफोन नंबरों पर संपर्क करें, 01262-255-446, 255-447 और 255-448। श्रोता मंच कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से महीने के अंतिम रविवार को शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक लाइव प्रसारित किया जाता है। इस बार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 28 जून को शाम 7:30 बजे, तो सुनना मत भूलिएगा। अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे अजनबी फिल्म से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, आर डी बर्मन का संगीत, गीत आनंद बख्शी का। पसंद है आप सभी की। आप हैं बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता हार्दिक, प्राची करमरकर, तन्नू करमरकर, मोरीगेट दिल्ली से कन्हैया लाल, रीता शिल्पा, आकाश, महसूल सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन, प्रिंस इशरत, वसीम, रुबीना आरिज, साजिया शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, ममता शर्मा, पूनम शर्मा, जलगांव जालना से डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अभिषेक भूतेकर, गणेश कार्तिक अश्वनी, औरंगाबाद से वैष्णवी जगदाले, हर्षुल सावंग।

भावसिंहपुरा से वैभव, गौरव लोखंडे, वाकुलनी बदनापुर महाराष्ट्र से मेघराज, युवराज कोलते, रिधोरा देवी, रुद्र कोलकर, कबूलपुर रोहतक से रण सिंह दिलोड़, सतपाल मंजू, रोशनी दुग्गल, पूजा ओम, अंकित बोस, नौरंगी अटकान, सादुल शहर से आप हैं ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। अजनबी फिल्म का गीत आप सभी के लिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें आप सुनेंगे।

ये था अजनबी फिल्म का गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। अगला गीत आप सभी के अनुरोध पर है। आप हैं कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश प्रणाली, सर्वद सानवी देशमुख, खंडवा से

लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु मुकेश जगताप, सनावत से किशोर सांवले, रेखा सांवले, हिमांशु अनुराग, सुलोचना चारुवी, प्रणव सांवले, दत्रिंगी से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा, साल्याखेड़ी मालवा आगर से सोनू विश्वकर्मा, मोनू विश्वकर्मा, करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, हरिपाल रोड, मीनाक्षी तिवारी, वाशिम से ऋचा वसमतकर, सोनाली पाठक, संगीता पांडे, अश्वनी कुलकर्णी, कल्पना, सुनीता पांडे, मालती कंझरकर, संगीता, उषा रेंघाटे, छाया पोरकर, तृप्ति श्रृंगारे, विशाखा आमले, माधुरी जोशी, सोनू जीतू, छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फुलवाले, दुखना रानी, सदा फारजू, जूही इकबाल, आमना नसरीन, इमरान अहमद, नरेशा अहमद और जूही इकबाल। और ये पत्र है मोहला हिसार से राजकुमार ढोचक, गीता अमन, सानिया, सुभाष, उषा, राहुल, रोहित, जोगेंद्र, दर्शना, इंदु, यक्षित का। समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, आदिति गुप्ता, राधे, दीपक, अंकुर, राघव गुप्ता। कर्णपुरा नई दिल्ली से कविता, गौरव मानसी, अनिल मदान। फुल चिंचोली पंढरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया, सुबहान, समीर, सलमा, मुमताज़, दिलशाद, नसीर मुलानी, बानू बी मुलानी, बादशाह और इनके साथी। हरगोविंद नगर नवाशहर से सुरेंद्र संधु, अनीता रोहित, रितेश, प्रीतिशा संधु और मैक्स संधु। आप सभी के लिए काला सोना फिल्म का गीत आशा भोसले और डैनी डेंगजोपा की आवाज़ों में गाया हुआ सुनवा रहे हैं। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत है आर डी बर्मन का। इन सब के साथ आइए, हम भी सुनते हैं।

और अब कार्यक्रम का आखिरी गाना आप सभी के अनुरोध पर आप पांडु पिंडारा से बादल सिंह गिल, कमलेश टीनू, प्रीति अंकित वानी का, गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला विशाल, निशा राठौर, करनाल से जग्गी दुआ, प्रेमलता दुआ, सुपाई साई झारखंड से देवेंद्र तांती, राकेश प्रकाश और निशा तांती। जीत फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें आप सुनेंगे।

0: आपने सुना आपके अनुरोध पर कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। 2 बजते हैं, अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: गुड आफ्टरनून, दिस

0: दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन के सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की। और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन

0: पर्यटन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
1: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गाँव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुँच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
2: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार 2रे और 3रे स्तर के शहरों तक किया है।

0: एसटीपीआई पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एसटीपीआई को टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहां पर पटना में साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी एसटीपीआई जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, एआई के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
2: Our position on Indus Water Treaty is well known.
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूता
0: रहा। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब आप खेत खली

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आया खुशियों का पैगाम
2: PM किसान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: अन्नदाता का बढ़ता मान पीएम किसान।
3: खेत खलियान कार्यक्रम सुनने वाले सारे बण भाई ने बलजीत भाई की राम राम। भाई देखो, जो मौसम चल रहा है ये पे दो एक दिन थोड़ा परिवर्तनशील रहा, लेकिन कल मैं शाम को थोड़ा आंधी का और किते किते छिड़काव भी ज़रूर हुआ है, और आज फिर जो है धूप थोड़ी ही ठीक निकल रही है, यानी कि तापमान चोखा है आज भी। तो एक काम इसे है कि खेती बाड़ी के काम धंधे और ख़ास तौर पर जो अपने धान की रोपाई भी किसान भाई लाग लिए हैं करने, लेकिन बार बार ये बात कही जा कि भाई इसी जगह धान की रोपाई करें जितना अपने द्वारा पानी पात के साधन ठीक ठाक हों। पानी के साधन कम हैं, धान की रीस कर ली, पानी पुगा नहीं, फिर उसमें खर्चा ज़्यादा बनेगा और आमदनी कम होगी। इसके लिए हमने देखना है कि अगर हमारे द्वारा पानी पात के साधन थोड़े कम हैं तो हम दूसरी फसलों का विकल्प देखें। भाई मोटे अनाज वाली फसलें हैं, बाजरा है, चारे वाली ज्वार है, या और भी बतेरे ऐसे विकल्प हैं जिनकी हम कास्त कर सकें हैं, अरहर की कास्त कर सकें हैं, और बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनमें कम पानी की ज़रूरत पड़े है। इसका हमने एक फ़ायदा और भी मिलेगा कि भाई पानी तो कम लागे लागेगा, साथ साथ में जो हमारी ज़मीन की सेहत है उसमें भी सुधार आएगा, क्योंकि हम दो फसलों के पाछे पड़े रहे हैं कि भाई धान और गेहूँ, तो दूसरी फसल अगर लग जाएगी तो उसमें फिर फसल चक्र भी अपना आ जाएगा। ख़ास तौर पर हम दलहन वाली फसलों की बात करें, तिलहन की बात करें, वो इस तरह की हम फसलें अगर बीच में लेनी शुरू कर देंगे तो फिर ज़मीन की जो ताकत है उसमें भी सुधार आएगा, ताकत बढ़ेगी, बैक्के तत्वों की जो कमी होती जा है बार बार वह कमी कम हो जाएगी। तो इसलिए भैया तो यही गुजारिश है कि भाई पानी पात के अपने द्वारा सही साधन हैं और भाई ज़मीन में चौवास जो थोड़ा ऊपर है यानी कि जल स्तर ऊपर है तो हम धान लगाएं, ना तो हम दूसरी फसलों का ये थोड़ा रुझान करें। और आज शुक्रवार भी है तो भैया ने बता दें कि भाई आज फ़ोन इन कार्यक्रम भाई पशु वाद संबंधित फासला था, और आज का जो शुक्रवार है उसका जो है खेती बाड़ी से संबंधित जो भी अपनी समस्याएं हैं और जितनी जो अपनी फसलें चल रही हैं उनका भाई बीज कौन सा लेना, हमने क्यूकर इसकी बिजाई करनी है, कितना इसमें खाद की मात्रा लेनी है, क्यूकर हमने बीज उपचार करना है, सारी की सारी फसलों की जानकारी आज फ़ोन इन कार्यक्रम में दी जाएगी। डॉक्टर साहब साथ में बैठेंगे। रिकॉर्डिंग का जो टाइम है हमारा वो 3 से लेकर और 4:15 बजे तक रहेगा, बल्कि 4 बजे तक रहेगा, तो एक घंटे का जो रिकॉर्डिंग कार्यक्रम है इसने फिर हम 6:20 तक जो है सुन सके हैं। सांझ के युवक कार्यक्रम जो है वो फिर आपको सुनवा जाएगा, तो रिकॉर्डिंग का समय रहेगा अभी 3 से लेकर 4 बजे तक। तो भाई जितने भी किसान भाई हैं और अपना खेती बाड़ी संबंधित कोई समस्या है और वो पूछना चाह रहे हैं तो इस बारे में फ़ोन करके ना और अपना ज़रूर पूछें। फ़ोन नंबर भैया ने हम बता दें हैं कि भाई जो रोहतक का कोड हो 01262, और जो हमारी टेलीफोन लाइन जो चालू रहेंगी 255-446, 255-447, 255-448, तो ये 3 फ़ोन लाइनें काम करेंगी। और जस्ट यू कार्यक्रम जो है

0: और हम जल्द से जल्द सामान शहर में बेच सके हैं, बाजारों तक बेच सके हैं, तो फिर फूलों की खेती एक बहुत बढ़िया विकल्प है और इसमें आमदनी भी बढ़िया है। सारा साल तकरीबन खेती चलती रहे, कुछ गर्मियाँ के हैं, कुछ बारिश के हैं, कुछ सर्दियाँ के फूल हैं, तो किसी भी तरह की हम खेती जो है फूलों की वा करकन है और सारा साल इसका हम आमदनी ले सके हैं। तो इससे विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले भाइयों का मनोरंजन भी करवाओगे। पहले भाइयों को एक रागनी सुनवा दें। गायक कलाकार होंगे कुलदीप बोरिया और उनके साथी।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

मैं तिशुनी भैया ने रागनी, गायक कलाकार थे कुलदीप बोरिया और उनके साथी। बहन की गाई ओढ़ भैया ने एक रागनी और सुनवाओगे, लेकिन जो जिक्र था कि वह व्यापारिक फूला ही खेती, तो वह फूला ही खेती में सारा साल जो हम आमदनी मिल रहे हैं, और कुछ ग्रीष्म काल के वो हैं, कुछ वर्षाकालीन वो हैं, कुछ सर्दियाँ के वो हैं, जैसे कि हम गर्मियाँ के रे जो बारिश का मौसम ही होगा उसमें जो फूल होंगे, अफरेंथन अमरेंथन्स है और बालसम है, सिलोशिया है, कोसमोस है, गम्फरीना, गैलारिडिया और एस्कोलिजिया, मैरीगोल्ड, मॉर्निंग ग्लोरी, पिटूनिया, सनफ्लावर, साल्विया, जीनिया और वे रजनीगंधा, ग्लेडियोलस, बहुत सारे फूल हैं जिनके हम काश्त कर सके हैं भाई। नर्सरी में के लिए जो है क्यारी थोड़ी ऊंची जगह तैयार कर लें और मिट्टी में अच्छी सड़ी हुई कंपोस्ट मिलाकर क्यारी में जो है मिट्टी में आम 1% की दर से 22 टीन डालकर ने उसमें पानी ला दें, कैरी में 72 आण पर बीज बोएं, अच्छी छनी हुई कंपोस्ट की पतली सी परत उसके ऊपर बीजा के ऊपर चढ़ा दें और उगने तक घास फूस तो उसने ढक के रखें ताकि उसमें नमी ठीक ठाक बनी रहे। जिस पौधे के उगने के बाद जो है वो जो छोटी छोटी जो अंकुर उसमें फूटेंगे वह जब फूटने शुरू हो जाएँ तो फिर हम वह परत से उसकी ऊपर तक हटा दें। कैरी में बीज बोते हैं, बोने के बाद पौधे उगने तक हमने फुहारे तार की इसकी सिंचाई करनी है और फिर जो है जब मार्दोरवा प्यो तैयार हो जाए है, नर्सरी जब तैयार हो जाए है, तो उसमें तो फिर स्वस्थ पौधे काट कर हम दूसरी जगह इसने फौरन जो है सिंचाई कर दें। तो बहुत से ऐसी जो फूल हैं जिनके हम काश्त कर सके हैं भाई, कोई किसी मौसम का है, कोई किसी मौसम का है, हैं इस तरह के जो है बतेरे आ जाए हैं अपने दूरक किस्म हैं, तो उसमें बहुत सी किस्में हैं। गुलदाउदी की बात करा भाई, फरवरी तो मार्च थी भी और जुलाई से लेकर अगस्त थी इसकी कटिंग हुआ है, कटिंग के द्वारा भी लगाए जाएँ कुछ पौधे जो है बिजाई करके नर्सरी में तैयार करके ना फिर इसकी प्योध लाई जाए, कुछ कटिंग के द्वारा लगाए जाएँ। गुलाब की बात करें, गुलदाउदी की बात करें तो कटिंग के द्वारा भी लगाए जाएँ और वैसे भी इसमें लगाए जाएँ। तो इस तरह के जो है किस्मा का हमने ध्यान रखना है। गुलदाउदी की बात करें तो कुछ तो वार्षिक पुष्प किस्में इसमें स्पेशल मिक्स है, क्राइसैंथेमस है और कोरेनिनियम है, तो इस तरह की बहुत सी किस्में हैं। बड़े फूल वाली किस्में हैं, स्नोबॉल है, चंद्रमा है, सोनार बंगला है, लोकल डबल, सफ़ेद पिंक, इस तरह के छोटे फूल वाले भी हैं, ज्योत्सना, फ्लैंट, जया, वसंतिका, पूर्णिमा, तो इस तरह की बहुत सी किस्में हैं। हाँ, इसमें ज़रूर एक पे अपना किसान जो विज्ञान केंद्र हैं या बागवानी विभाग है उड़ा जाकर एक बार ज़रूर जानकारी लेवें और फिर जो हम फूलों की खेती की ओर रुझान करें। खास तौर पर उड़ा रुझान बढ़िया रहेगा जित अपना शहर के नज़दीक खेत से और यातायात के साधन अपने दूर ठीक ठाक से, क्योंकि फूलों की तोड़ाई करी, ताज़े के ताज़े फूल हमने बाज़ार में भेजे, जब जाकर इसका हमें फ़ायदा मिलेगा। रजनीगंधा की बात करें, रजनीगंधा का भी इस टाइम पर और हम ये कर सकें, इसमें भी जो है थोड़ा अपना किस्में हैं, सिंगल है, डबल है, इस तरह की, या फिर हम भाई जो अपनी ग्लेडियोलस है उसकी है, गेंदे की कुछ किस्में हैं, तो बहुत सी ऐसी किस्में हैं जिनका हमने जानकारी लेनी पड़ेगी, उसके हिसाब पर हमने फिर अपना खेत की तैयारी, बीज की मात्रा, कितने बीज की ज़रूरत पड़ेगी, क्यारी नर्सरी में बीज जो है तैयार कर दिया ना, कुछ है कि नर्सरी तैयार होनी शुरू हो जाएगी, आगे चाल के इनके लाग जाएंगे, कार्नेशन है और बहुत से ऐसे हैं, गेंदे की हैं, बहुत सी तरह की भाई बिजाई नर्सरी में जुलाई में शुरू हो जाएगी, सितंबर तक 10-10 सेंटीमीटर जो ऊपर उठी कैरिया में हम इसकी बिजाई कर सके हैं, फिर आगे चाल के पौधे लग जाएंगे। तो इस तरह की हमने जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है और जानकारी लेंगे जब जाकर ना हम इनकी खेती में बढ़िया तरीके से कामयाब हो पाऊँगे। किस्मा का ज़रूर बढ़िया चुनाव कर लें। गेंदे की बात करें, इशार ब्यूटी है, इशार जाफरी है, अफ्रीकन गेंदा है, इसमें भी फिर बहुत सी किस्में हैं, अफ्रीकन ज्वाइंट ऑरेंज, अफ्रीकन ज्वाइंट येलो, अफ्रीकन ज्वाइंट लेमन है, फ्रेंच आड़े हैं, रस्टी रेड है, बटर स्कॉच है, रेड ब्रेक्टिड और लोकल जो किस्में हैं वही भी हैं। तो इस तरह का भाई 160 से 240 ग्राम बीज प्रति एकड़ हमने जो है अगर इसकी फूला की कास्ट करनी है तो नर्सरी में बीज इतना लगेगा और फिर इसकी जो है पौधों की हमने इसमें

रोपाई करनी है एक एकड़ में। तो इस तरह का क्यारियाँ का हमने 3 फुट की चौड़ी, 6 फुट की लंबी, ये हम क्यारी ही बना लें 10-1 सेंटीमीटर ऊँची उठी ओट बना करें, और फिर जो हम इसमें से बिजाई करें फिर पौधा की हम रोपाई करें। तो इस तरीके से हमने ध्यान रखना है। और भाई समय बच गया था, जिक्र और भी करेंगे भैया ने, एक राग नहीं और सुनवा दें, गायक कलाकार एक बार फिर कुलदीप बोरिया और उनके साथी।

भाई यार अग्निश्वनी गायक कलाकार थे कुलदीप बोरिया और उनके साथी, और भाई फोन इन कार्यक्रम है और खेती बाड़ी से संबंधित कार्यक्रम है। फिर भैया ने बता दे हैं भाई 3 से लेकर 4 बजे तक रिकॉर्डिंग रहेगी, और इससे कार्यक्रम ने फिर अपना 6:20 पर सामने सुन सके हैं। तो जो भी आपकी खेती बाड़ी से संबंधित समस्या है, चाहे वो अपना खाद पानी से संबंधित है या फिर अपना बीज संबंधी समस्याएं है, बीज उपचार संबंधी समस्याएं हैं, या कौन सी फसल का किस टाइम पर समय आ रहा है, हमने कौन सी अपनी फसल लेनी चाहिए, इन सब बातों की सब जानकारी आपने इस कार्यक्रम में मिलेगी। खेती बाड़ी से संबंधित डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, फ़ोन करके अपना पूछ सके हैं। फ़ोन नंबर एक बार फिर भैया तो बता दें हैं भाई, जो रोहतक का कोड है एसटीडी कोड 01262, और जो हमारे टेलीफोन नंबर हैं वो चालू रहेंगे, उनमें 255-446, 255-447 और 255-448। और भाई कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ है, चालें सारे बण भैया ने, राम राम।

आपने खेत खलिहान कार्यक्रम सुना? मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर डीटीएच और न्यूज़ जोन AIR पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। FM बैंड 103.5 MHz पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। तीसरी सभा में आज शाम 5:10 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर डीटीएच और न्यूज़ ऑन AIR पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कायरो तक केंद्र है। इस समय शाम के 5:10 होने को हैं। अब हमारी विशेष सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार मेला 2026 में संबोधन का सीधा प्रसारण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: नई दिल्ली के विज्ञान भवन लिए चलते हैं, जहां से आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रियो। आइए विज्ञान भवन चलें।
2: नमस्कार, विज्ञान भवन के प्लानरी हॉल से मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरे साथी कमेंटेटर डी एंड्रियो मेरे साथ हैं और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यहां हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
3: Yeah, the Prime Minister has arrived already, is in Vigyan Bhavan and is in a separate hall where he's having a talk, a discussion with the beneficiaries who are going to be benefited today from this this Yojana, that is the Vikshit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister. And then after that, he'll be coming over here in a short while. He'll be entering the plenary hall wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses, and of course they're flanked by yellow and

0: pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, that are numbering about, about 600 people, we are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs, and it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it'll be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
1: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी. बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना.
0: And we got appointment letters, Preeti, when we got a job. And now you see, everything is digital. So India's also gone ahead with the world because everything is digitized now. And today, in fact, around 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters. And that is going to cost about 2,400 crores only for today. And then, of course, and the final aim, the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs, and the total budget is for this is about 99,446 crores.
1: बिल्कुल. और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, और साथ में होंगे श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और साथ उनको जो स्कॉट करके लाएंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे.
0: या दिस टू बेनिफिशियरीज आर गोइंग टू ब्रिंग द प्राइम मिनिस्टर टू द डेस्क. व्हाट अ प्रिविलेज फॉर देम. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर देम. एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू द मोटो फॉर दिस इज रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार. What an encouragement to the people who are going to start the business. And then the transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all, that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology, FAT, through for getting the number, and 99.68% of UANs have been generated, which is the universal account number.
1: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नजर डालें तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है, और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा. तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी, और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में. और हाँ बोलो. इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें, उस पर एक नजर डालें, तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई, और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं, पहले ही हो चुके. और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है, और आगामी दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है. तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हों. और शुरुआत से अब तक का सफ़र देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है, और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना. और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे. ये एक एनकरेजमेंट होता है, और कुछ बेहतर करने की एक जो ललक होती है वो
0: उसमें आती है. पीपल विल फील सिक्योर, ओके द गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प अस आउट, सो वी शुड नॉट फील दैट ओके आई एम नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग, बट let the, this our prime minister is given them an assurance that the government is there with you. That is what he says in this motto, no? Rozgar ya karobar साथ है भारत सरकार
1: जी। और चंद मुख्य बातों पर नजर डालें तो यहाँ जरूर बताना चाहेंगे, भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे। और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है, आसानी से सब पहुंच सके, और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है जी।
0: Yeah, and you know, this program operates under a dual incentive structure split into two distinctive parts. The first part is support for the first-time employees, jinko pehli baar naukri mili
1: hai.
0: This component focuses directly on the young individuals entering the formal workforce for the first time. And the eligibility is new employees joining an EPFO, that is the Employees Provident Fund Organization, registered establishment, with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh. And the worker must not have any prior EPFO history before August 1st, 2025. So these are the conditions. And then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage, capped to a maximum of rupees 15,000. Right? And then the disbursement will be in two stages. That is through the direct benefit transfer, DBT, through the Aadhaar verification in two equal installments using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees. And the second one after another 6 months. So after the completion of 12 months, they'll be getting a total of 15,000 rupees. And the employer also, of course, he also gains something. Every time he brings in a new worker, he also gets a benefit of 3,000 rupees per worker that he brings in. So obviously, when these benefits are there, even the employers, they'll try to bring in as many people as possible, and even the so that more and more people get employment, and they also, the employer also earns, the employees also earn.
1: बिल्कुल, सभी को फायदा है।
0: Yes.
1: बिल्कुल फायदा है। और आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा और वहीं सभी क्षेत्रों के नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं। और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी। और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
0: Yes. See, and then one more thing. See, the Ministry of Employment and Labour organizes and promotes Rozgar Melas, that is job fairs, which is being held today across India through the National Career Service portal. That is the National Career Service India, to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service, NCS, is the official platform where you can search for local job fairs. It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you are reasonable, you are well qualified for their jobs, you'll be picked up.
1: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था, आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा, बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा। कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुँच गए हैं। तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं, नहीं आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं, और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का। इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। 4 श्रम संहिताएं लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति, विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना?
0: That's true. And that's what we say, you know, dreams are being fulfilled under the prime ministership of Mr. Narendra Modi. And in fact, this applicable period for this the one which is taking place right now is from the 1st of August 2025, it started last year, till the 31st of July 2027. So this is for a period of 2 years. But in manufacturing

0: sectors, heavy industries, where it is up, means it is extendable up to a period of 4 years.
1: Hmm.
0: Benefits are applicable up to a period of 4 years.
1: 4 years.
0: Yeah. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization, which is a strength of 7.99 crore members. And then 84 lakh pensioners who are being benefited by this EPFO.
1: बहुत ही ध्यान से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये.
0: बिल्कुल, to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with the other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
1: और आकाशवाणी के माध्यम से आंखों देखा हाल आप तक पहुंच रहा है और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्ता पूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो.
0: यस, एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलवेज पुट लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द यूथ, यू नो, द यूथ ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज दे आर द फ्यूचर पिलर्स, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू होल्ड दिस नेशन. सो ही इज पुटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन देम एंड ही सीज दैट ऑल आर एम्प्लॉयड, ऑल गेट एम्प्लॉयमेंट, नन ऑफ देम आर लेफ्ट विदाउट अ जॉब, बिकॉज यू नो हाउ मच फ्रस्ट्रेशन इट लीड्स टू व्हेन अ पर्सन डजंट हैव अ जॉब. सो दैट्स व्हाई द प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग ऑन दिस एंड इज ब्रिंगिंग आउट दीज स्कीम्स. एंड देन I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is being maintained. And the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive. He's on his way. And I want to tell you one thing, one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is social security for all.
1: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं सभी यहाँ. ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ.
0: Yes. Because this is applicable to 728 districts right now. Right now, and already 15 lakh people have already got their employment letter, the job letters, and that total incentive which is going to go to them is 2400 crores.
1: और थोड़ा सा सार देखें एंड्रयू तो जरूर बताना चाहेंगे. योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि दो किस्तों में मिलेगी और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जनरेट हुआ है.
0: Yes.
1: ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है. और सैलरी 1 लाख रुपए महीने से ज़्यादा ना हो, कम होनी चाहिए.
0: Yes,
1: तब
0: yes.
1: ये मिलता है. और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपये प्रति कर्मचारी मिलेगा और अगर कर्मचारी की सैलरी 10 से 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपये हर महीने मिलेंगे और 20,000 से 1 लाख तक है तो सैलरी तो कंपनी को 3,000 रुपये प्रति कर्मचारी मिलेंगे. इसका आपने जिक्र भी किया था.
0: Has been to generate more than 3.5 crore jobs across India, promote formal employment and social security coverage, support first-time job seekers. That is what it says, no? The scheme aims to make it easier for young people to enter formal employment while encouraging businesses to hire more workers and expand India's organized workforce. And then support first-time job seekers and then incentivize employers, especially in the manufacturing sector, to create new jobs. See, only when the employees also get an incentive, when they are paid something for every time they give a, they get taken a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands, and of course, it is always on the for the development of the country.
1: Okay. ईएसआईसी का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा ये बहुत जरूरी है और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को फायदा है
0: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights and he has achieved it almost. He's taken India to great heights and right now and of course internationally, the world, India has got recognition as a mediator among warring countries because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.
1: चार श्रम संहिताएं लागू मजदूरी संहिता 2019 सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020 29 श्रम कानूनों का एकीकरण सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम पारदर्शी कुशल और डिजिटल प्रणाली और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना जी
0: एंड आई एम रियली ईगर टू सी आवर प्राइम मिनिस्टर कम एंड प्रेस दैट बटन यू नो द मनी विल गो टू 15 लाख पीपल इनटू देयर अकाउंट्स एंड दे विल बी गेटिंग द लेटर्स एंड इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस प्रीति इनफैक्ट आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस यू नो जस्ट एट द प्रेस ऑफ अ बटन 15 लाख people beneficiaries get the employment letter India has also gone ahead with the world when we have advanced they have gone digital and we have gone digital so we are going digital in every field so we should be proud of our country and the people are anxiously waiting over here there are about 700 people I think or almost 700 people are seated over here right up to the top
1: जितनी कैपेसिटी है पूरी भरी हुई है
0: इट्स फुल नॉट अ सिंगल सीट इज एम्प्टी पीपल आर दे ऑल सी दे आर ऑल जॉब सीकर्स एंड मोस्ट ऑफ दीस पीपल दे विल बी गेटिंग द जॉब्स दे ऑल कीपिंग द फोन्स रेडी ऑन द टेबल सो एज सून एज द प्राइम मिनिस्टर प्रेसेस द बटन इट विल कम टू द फोन दैट दे हैव गॉट द लेटर
1: An amount will be transferred.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो नहीं आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है ये कह सकते हैं
0: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयज यू नो दिस इज द एलिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ दैट सक्सेसफुली जनरेट नेट न्यू एम्प्लॉयमेंट टू क्वालिफाई स्मॉलर फर्म्स फ्यूअर देन 50 बेसलाइन वर्कर्स मस्ट hire at least 2 new employees while larger firms 50 or more baseline workers must add at least 5 new employees and the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold provided they are retained for at least 6 months and the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors however to heavily support the manufacturing sector Businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah. And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a Universal Account Number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
1: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए और ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोज

0: रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार जी। और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और उनके साथ उनको स्कॉट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना नानी और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे।
1: एंड सी द ब्यूटी इज दैट द पर्सन विल बी गिविंग द बोके इज वन ऑफ द यंग बेनिफिशियरीज एंड ही विल बी सो हैप्पी इन हिज हार्ट दैट आई एम गेटिंग अ जॉब एंड अ प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन दिस जॉब टू मी सो एंड आई एम टेलिंग इट्स रियली गोइंग टू चेंज द लाइव्स ऑफ दीस पीपल ऑल दीस बेनिफिशियरीज हु आर सिटिंग ओवर हियर इन द प्लेनरी हॉल ऑफ विज्ञान भवन एंड दे विल बी ड्रीमिंग यू नो आई एम श्योर आई एम गोइंग टू कम अप And I think they are all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive. And once he arrives, then the other deliberations will take place. The Union Minister, he'll give the welcome address. And then the Prime Minister will be... There'll be a filming of the... Short film that will be filmed on the screen. And then after that, he'll be clicking on the button. The magic button. That is the magic button, which will give jobs to about 15 lakh people across the country. And then, of course, the Prime Minister will give his speech. And I'm sure people are waiting for him to give his speech because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of Prime Minister, they all know that whatever he does is something, you know, means... He wants to build India into one of the superpowers in the world, bring the rank of our country to the top. And his dreams, you know, of making India a strong economic power. And he's on the way, he's on that route right now.
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत ज़रूरी भी होता है। अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएँ 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं।
1: And see the dais, how many bouquets are there? The Prime Minister will be sitting right in the middle. On the right, he'll be flanked by the Union Minister and on the left by the Minister of State. And the board behind, you know, it's a beautiful one. There's a screen on the on the plenary hall and the dais, just behind the dais, there's a beautiful board. And on that, the Prime Minister, the Rozgar Yojana, everything is given, all the details are given on that.
0: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए।
1: Yes, and this, you know, I want to tell you, in fact, I've seen over the years, I think this is the 12th year, he's completed 12 years of his rule as the Prime Minister of our country. And all these years, you know, his intention has always been to generate more and more employment, right? Just to remove this unemployment, reduce it to the max, minimum, reduce the unemployment to the minimum so that more and more people are employed. And they are able to overcome all the financial problems that they go through. And because through all through

0: पड़ेगा।
1: यस,
0: जब रिमोट का बटन प्रेस होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी। बस इंतजार तो कुछ ही पलों का है, ज्यादा नहीं। और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा। और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे, बातचीत खत्म ना हो। नहीं,
1: या आई थिंक एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड, दे आर ऑल इन अटेंशन एंड आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग विद अदर डिग्निटरीज, ही विल बी टेकिंग हिज सीट ऑन द डेज एंड वंस ही कम्स इन द प्रोग्राम विल बिगिन, ही विल बी फेलिसिटेटेड विद अ बुके बाय वन ऑफ द बेनिफिशियरीज। That will be a privilege for the beneficiary, the student, young student, who will be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, I think, has arrived, he has entered, and is walking in the most smartest way, our Prime Minister.
2: दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
3: एक बार
2: जोरदार तालियां हो जाए। देवियों और सज्जनों, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
3: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का।
2: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें।
3: मैं मन्नत भाटिया
2: और मैं जयवर्धन गोयल,
3: माय भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का सादर स्वागत एवं अभिनंदन।
1: The Prime Minister has arrived. He's taken his seat on the dais.
3: माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको सविनय सूचित करना चाहते हैं कि आज
1: flanked by the Union Minister on his right and by the Minister of State to his left.
0: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया।
2: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री सिखामोनी डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां।
0: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने।
2: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है। यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है।
3: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे।
1: And now the welcome
2: एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
1: By श्री मनसुख मांडविया, the Minister for Labour and Employment. He walks to the podium to give a speech.
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण करने के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदला जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है। और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी, उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा। पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा। वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है। महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टेब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयर को 1 साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है। जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था, 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉयज़ को वर्ष में 1 बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का एक नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आज़ादी के पहले बनी है और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। ये क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख जॉब क्रिएट हुए थे और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए

0: मेरे देश के को युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी, और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा। उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करे तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उसका फलस्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर, कुछ एक पलों में, है ना?
2: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
3: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
4: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
5: आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
4: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1 लाख रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1 लाख तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी, और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
6: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया, जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
7: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार।
2: That was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana, and that was a short film. And now, very shortly, the Prime Minister will be distributing the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries, and the people are waiting anxiously. And the button is coming right in front. That is a remote control button. And the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters, and they'll be getting the money. And the Prime Minister presses the button, and you can see the people cheering.
8: तालियों से स्वागत किया सबने इस बेहतरीन क्षण का, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
3: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
2: What a time, what a moment. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
3: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
1: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
3: तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
9: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2 लाख लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है। भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती है, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है और कभी बड़े होने की संभावना, उसको लगता है नहीं ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए और ये उद्योग को भी जरूरत होती है और इस योजना से वो द्वार भी खुला है। और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं, इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है, करीब 70

फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। ये उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी कि कितना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है। एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप

हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज

2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है, हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज
हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है। इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है। और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं। और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं। जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं। क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी। शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है

0: भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खुलता है और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम, ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है। एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विकसित भारत 2047, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होके रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है। और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: Full stress on the youth of the country. And he says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said that their dreams is what my oath is. My oath is the fulfillment of your dreams.
3: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है। और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना एंड्रू। और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी टीम इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
4: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम

0: का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे हिंदी में प्रीति मोहन और अंग्रेजी में डी एंड्रियो।
1: सोच के साथ प्रधानमंत्री सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को

0: Entities across the country. More than 63 lakh employees have been brought into the formal workforce under PMVBRY, of whom nearly 30% are women. PMVBRY is designed to encourage both workers and employers to participate in the formal economy. Under the scheme, the first-time employees are eligible for an incentive up to 15,000 rupees, providing crucial support as they enter the workforce. Employers generating additional employment are eligible for incentives of up to 3,000 per month per additional employee, thereby encouraging sustained job creation.
1: पुनीत, 2004 से 14 तक की अगर हम बात करें तो लगभग 3 करोड़ रोजगार की दर थी, और अगर हम देखते हैं 2014 से लेकर के 24 तक तो ये 17 करोड़ अब आंकड़े उभर कर आए हैं. आप इस ग्रोथ स्टोरी को कैसे देखते हैं?
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है. अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए.

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाई ने बलजीत भाई की राम राम भाई। आज शुक्रवार है और बारी है फोन इन कार्यक्रम की, और आज का जो हमारा विषय है वो है खेती बाड़ी से संबंधित समस्याएं और उनके समाधान के बारे में। और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे बीच स्टूडियो मौजूद हैं, आप हैं डॉक्टर करमल मलिक, आप हिसार जो कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय है उसमें कपास अनुभाग में कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब स्टूडियो में पहुंचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद बलजीत जी।
0: डॉक्टर साहब बात करें, देखो अपना जो भी समय चल रहा है खेती बाड़ी का, और बहुत सी फसलों का जो है बुवारा चल रहा है, रोपाई चल रही है, बहुत सी फसलें ऐसी हैं जो बोई जाएंगी। तो ख़ास तौर पे जो बात करें हम धान की रोपाई की या कपास की बात करें हम, कि कपास में कौन कौन से कार्य हम कर सकते हैं इस टाइम पे।
1: देखो कपास बलजीत जी अब 1 महीने से लेकर और 2 महीने तक की है, और उसमें अब पीछे पूरे हरियाणा में लगभग बारिश हुई है,
0: हाँ
1: तो किसान भाई उसकी निराई गुड़ाई।
0: डॉक्टर साहब एक फोन, हेलो
2: हेलो नमस्ते जी।
0: जी, नमस्कार जी, नाम बताएं।
2: राजवीर गांव पांडवान जी।
0: राजवीर जी गांव पांडवान से, कैसे हो
2: हाँ
0: राजवीर
2: जी
0: जी?
2: ठीक है। आप कैसे हो?
0: बढ़िया जी। क्या समस्या आ गई?
2: या बद्र बोन की जी मैं डटकी बोगी बबो जाए जी
1: नहीं, अगर
2: तारा का से।
1: बारिश बारिश आपकी पर्याप्त हुई है तो आप बो सकते हैं।
2: हमारी स्टोरी है जी बाजरा मूंग है
1: हाँ,
2: बो
1: बस
2: दिया बाजरा
1: मतलब
2: बस
1: 10-12 अंगड़ अगर बारिश है, और थोड़ा सा
2: बोला
1: मौसम
2: थोड़ी जी।
1: का, मौसम का भी आप ध्यान रखना। आने वाले 2-3 दिन और बता रखिए, शायद 20 तक पूर्वानुमान जो है।
2: हाँ जी
1: हाँ, तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रख के आप बिजाई कर सकते हो। नमी अच्छी होनी चाहिए,
2: नमी जी सात आठ अंग बोलते ज्यादा है नहीं नमी
1: तो
2: है
1: आपकी मिट्टी किस साइड,
2: बालू
1: जित
2: रेती
1: बालू रहते
2: बालू
1: हैं।
2: रेता ठीक
1: हाँ, तो आप बिजाई कर भी सकती हैं ऐसी।
2: है। मलिक साहब नमस्ते
1: जी,
2: जी
1: नमस्कार जी,
0: नमस्कार। हेलो हेलो
2: मलिक
0: हेलो
2: भाई राम राम
0: जी, राम राम जी, नाम बताएं।
2: डॉक्टर साहब मलिक जी को राम राम।
1: राम राम जी, राम राम।
2: जयवीर प्रजापति बोल रहे जी गांव सांगा।
0: हाँ जी, जयवीर जी, समस्या बताइए।
2: हाँ डॉक्टर साहब
1: हाँ जी,
2: एक आम का पेड़ है उसका
1: अच्छा जी,
2: आम लग रहा बहुत बढ़िया लग रहा बड़े लग रहे हैं पूरा पेड़ से तो उसका जी ऊपर पकाना था ना हमें तो पीड़ा पीड़ा हो कि ना गज यार कीड़े पड़ गया है ऊपर है
1: देखो
2: पड़ गया।
1: कीड़े तो क्या है कि वो फ्रूट फ्लाई का है, पहले से ही है, और इस मौसम में थोड़ा सा कम पक्या हुआ आप उतार लो तो ज़्यादा बेहतर है।
2: हाँ वाली आपकी बात ठीक है जी कम पकोड़ा कर जाए वो को नहीं होगा खराब ऊपर खराब हो जाए ऊपर पकाना था वो खराब हो
1: तो
2: जाए।
1: वो तो फिर कीट को भी पसंदीदा हो जाता है ना, जब मीठा
2: हाँ
1: ज़्यादा हो गया उसमें, तो फिर वो कीट की समस्या हो सकती है। और ये गर्मी का टाइम है।
2: गलत जाए जी खराब हो जाए ऊपर पकाना था खराब हो जाए नीचे उतार जाना है वाले कम वो उसका बड़ा हुआ बस है वो ठीक है फिर उनका खाना उनको खराब भी तो नहीं है क्योंकि मतलब पत्ता तार के उतार रहे।
1: ना जी, ना ना, आप तो उसको अपने प्रोसेस से ही पक रहे हैं, वो कोई दवाई थोड़ी लगा रहे हो।
2: हाँ तभी तो बात है भाई पता नहीं जी पूरे आधा आधा किलो तक के हो यार फिर गलत गया है सही चक्कर।
1: ना, वो गर्मी का मौसम है और उसमें हीट की वजह से, और कई बार शुरुआती दौर में उसमें फ्रूट फ्लाई वगैरह हो तो वो भी नुकसान करती है।
0: जी
2: चलो तो मतलब कच्चा खाना चार ना मतलब खाना कोई खराबी कोई खाना
1: ना
2: चार
1: जी, ना
2: चलो
1: ना ना, कोई दिक्कत नहीं, हो पक जाएगा।
2: जी नमस्कार जी डॉक्टर
0: जी जयवीर जी,
2: साहब
0: धन्यवाद जी फोन करने के लिए। हेलो, तो डॉक्टर साहब बात करें कि हेलो डॉक्टर साहब,
2: हाँ
0: हेलो
2: जी राम राम
0: जी,
2: जी।
0: राम राम जी, नाम बताएं।
2: नाम सुरेश कुमार जी जिला रोहतक जी तहसील कलालौर जी।

0: जी, सुरेश कुमार जी, बताइए जी, समस्या।
1: जानकारी किसके बारे में जी, किसान के बारे में जी, पशुओं के बारे में जी।
0: नहीं, किसाना के बारे में तो सारी हो जी, चाहे पशु वाली हो चाहे वैसे, लेकिन आज खेती बाड़ी की है।
1: हाँ, खेती बाड़ी की समस्या जी।
0: जी,
1: तो बीएसआर धान लगाने का थी, बरसात हो नहीं, पानी खा रहा है, तो उसका उपयोग बताओ कैसे हो जाए। पानी का प्रसाद रोड़ा है जी,
0: बारिश नहीं हुई अब तक की?
1: बारिश नहीं हुई, चिटा फूटी हुई है जी।
0: हाँ,
2: अभी बारिश होगी, मतलब ये मान के चलो ऊपरी मानसून की भी अनुमान बताया जा रहा है जी, हैं।
1: तो
2: और
1: मैं ये पूछ रहा था, सातों में सातों महीना बाद अच्छी बरसात हो जाए, अच्छी बरसात होने के बाद डीएसआर लगा सका जी, सातों महीना।
2: हाँ बिल्कुल लगा सकते हो जी, क्योंकि इस महीने के आखिरी तक तो यूँ मानो आप नर्सरी वाले की भी जो ट्रांसप्लांटेड राइस है वो भी लगा रहे हैं, तो आप लगा सकते हैं, थोड़ा लेट तो हो जाएंगे।
1: जी, फिर हमने वहां जी निचला पानी कम से कम उपयोग करा जी, निचला
2: आप नहीं,
1: पानी।
2: हर कोई यही चाह रहा है जी, नीचे का पानी को कम यूज किया जाए, जहाँ अच्छा है वहाँ भी कम यूज किया जाए, क्योंकि पानी कम रह गया आप लोगों के पास तो यूज नहीं कर सकते, जहाँ खराब पानी है वहाँ चूहा ऊपर आ रहा है।
1: फास्फोरस कितना डाला जी, फास्फोरस।
2: फास्फोरस किस रूप में डालेंगे, मतलब SSP में डालें आप, 25 से 30 किलो आप उसमें डालिए। हाँ,
1: डीएपी, डीएपी
2: DAP का 1 बैग आप डाल दो, उससे नाइट्रोजन भी थोड़ा मिल जाएगा ना।
1: अच्छा जी,
2: हाँ,
1: ठीक
2: 27 से 28 किलो यूरिया हो जाए,
1: है जी।
2: यूरिया 3 बार में डालना होता है,
1: कितना जी?
2: मतलब शुरुआत में डाल दिया, उसके बाद आप जो जैसे ही, अब सीधी बिजाई भी तो 2 बार, 2 तरीके से होती है, एक तो आप बीज डाल के पानी लगाएं, एक बत्तर आने के बाद बिजाई करें।
1: जी, मतलब बत्रा बत्र में बिजाई करें जी, वैसे नहीं करें जी, पानी बो के बिजाई ना, वो पानी ना वो बत्र बरसात
2: बत्तर
1: होने
2: में
1: के।
2: पहला तो आप शुरू में यूरिया डालें, उसके बाद महीने 1.5 महीने बाद फिर डालें उसका आधा जो आपने शुरू में डाले हैं।
1: अच्छा जी, जिंक करिए जी, गिरा
2: हाँ,
1: जी,
2: जिंक
1: जिंक।
2: बिल्कुल डालो जी, जिंक 10 किलो प्रति एकड़
1: हाँ जी, जिंक तो जिंक खेत ना बनाओ सही जी।
2: ना, वो सभी का मिश्रण होता है जी, एक चीज़ कोई भी पूरे को ठीक नहीं करती, ये तो पोषक
1: जी
2: तत्व है जी, अलग अलग का अलग अलग कार्य है, और हर किसी की आवश्यकता होती है अलग अलग मात्रा में।
1: तो ये बढ़िया ना, मानसून आने की संभावना है जी?
2: हाँ, संभावना तो है ही जी, मतलब अभी ये फिक्स नहीं हुआ है भाई कब तक का पूर्वानुमान, तो ये कहा जाता है कि अगले महीने के
1: अच्छा
2: शुरू में देखो,
1: जी,
2: मध्य भारत तक तो आए हुए हैं जो अनुमान बताए जा रहे हैं।
1: अच्छा जी, ठीक है जी, सात प्रसाद बिना मदद के प्रसाद हो जाए, डीए सारे कर सकते हैं
2: बिल्कुल
1: ठीक
2: जी
1: है जी।
2: जी
1: मेरी मेरी फूफा ज्यादा कर ले भाई, खा जाएगी ठीक
0: जी जी जी
1: है जी।
0: जी सुरेश जी, नमस्कार जी, और धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। हेलो हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी,
1: हाँ
0: नाम,
1: जी, नमस्कार सर,
0: नमस्कार जी, नाम बताएं।
1: मैं दलजीत बोल रहा था हिसार से।
0: हाँ जी दिलजीत जी, प्रॉपर हिसार से बोल रहे हैं आप?
1: ना जी, नजदीक है गाँव,
0: हाँ जी
1: एक नींबू का पेड़ है जी,
0: जी
1: 12 महीना जो लगते हैं फल उसके, कई साल के बाद पिछले साल लगा था उसका, अच्छा फल आया, और इस बार छोटे छोटे लगे हैं,
0: जी डॉक्टर साहब, नहीं
1: और
0: उसमें
1: जिन टहनियों को पिछली बार लगा था उनका एक भी नहीं लग रही टहनी का।
2: नहीं, ऐसा है जी, उसमें एक तो जो कटाई छटाई की थी आपने,
1: ना जी, कौन करी?
2: हाँ तो कटाई छटाई कुछ क्या होते हैं, टहनियाँ ख़राब हो जाएं तो उसमें उसमें दोबारा ग्रोथ जो आएगी वो अच्छी आएगी, और खाद
1: अच्छा,
2: वगैरह क्या डालते हैं आप, गोबर की खाद डाली उसमें?
1: ना जी, खाद को तो एक ही पेड़ है वो खेत
2: नहीं तो
1: में।
2: गोबर की तो डाल ही सकते हैं, आवश्यकता तो चाहे एक हो चाहे ज़्यादा हो, उसको पोषक तत्वों की तो आवश्यकता रहेगी जी,
1: अच्छा जी,
2: बस इतना है कि भी आप कॉमर्शियली यूँ है यूँ कौन सोचो भाई 20 किलो की जगह 30 लाख जी, इसीलिए वो उसमें ऐसा है कि भाई कम फल आया या कम फूल लग रहे या छोटे छोटे हैं, कम से कम और रासायनिक खाद ना डालो, गोबर की खाद डाल दो, या जो
1: अच्छा
2: आपका जो से कचरा होता है जैसे सब्जियों का कचरा वही डाल दो, गल जाएगा धीरे
1: ठीक,
2: धीरे। हाँ जी,
1: एक जामुन का पेड़ है जी, 8-10 साल का हो गया, उसका अभी तक जामुन नहीं लग रहे।
2: नहीं वो तो देखो प्योंदी है या देसी है, और जामुन के 4 साल में भी लग जाए और 10 साल भी लग जाए हैं। हाँ जी
1: ठीक है
0: जी,
1: धन्यवाद
0: जी, धन्यवाद। हेलो हेलो
3: बलजीत भाई, नमस्कार
0: जी। नमस्कार जी, नाम बताएं।
3: आमिर शास्त्री जुलाना।
0: अच्छा जी शास्त्री जी,
3: हाँ
0: सुनाओ जी।
3: यहाँ डॉक्टर साहब आ रहे हैं आपके पास ही?
0: हाँ जी हाँ जी।
3: हेलो,
0: हाँ जी,
3: राम राम साहब
0: जी। राम राम, नाम बताएं।
3: मां जी जिला दादरी सखी दादरी राम कल्याण बोलूं जी।
0: हाँ जी,
3: बाजरा कौन सा पावा जी?
2: बाजरा आप कई वैरायटी हैं जी, जो भी आपको वहाँ उपलब्ध होता है उसकी बिजाई कर सकते हैं।
3: हमारी जो जमीन मटिया यही है, कृपा की जमीन भी सर उसका दोनों ला की जाए।
2: तो इसमें आप जो भी आपके वहाँ अवेलेबल हो, जैसे HHB 140, 197, 216, 223,
3: 67 की साथ रहता जी
2: हैं,
3: 67
2: भी ठीक है। थोड़ा सा उत्पादन कम है, लेकिन कम समय का है और इसको पानी की भी आवश्यकता कम है, लगा सकते अच्छा हैं आप
3: जी। अच्छा जी, धन्यवाद जी,
2: धन्यवाद जी,
0: धन्यवाद। हेलो, तो डॉक्टर साहब वो जो कपास वाली बात,
2: तो उसमें किसान भाई अगर अभी से जागरूक हो, फेरोमोन ट्रैप्स आते हैं,
0: हेलो,
2: वो निरीक्षण के लिए।
0: जी जी, नाम बताएं जी।
4: हेलो, राम राम डॉक्टर साहब।
2: राम राम जी,
4: मैं वो हड़ा टप्पा डैना रेवाड़ी के पास से बोल रहा हूँ, लाल सिंह
0: जी। लाल सिंह जी,
4: जी दो बार वह बोली के नाम से टिंड सी।
0: अच्छा जी,
4: और वह बेल चल रहे हैं, रूंगा बाद पीड़ी होके जल गया है, छपरे कर ली, सारा जतन कर लिया, लेकिन वह के चक्कर से पतो ही गुन्या बेल पर ना गन चल नहीं गुन्या ना उम्र सड़ा हुआ है,
2: या तड़े के पास काली हो रही हो, या गर्मी ज्यादा हो गया, नहीं
4: पत्ता पीला हो के ना गिर गया है, फिर वह सुकन लाग गया बेल।
2: पत्ता तो पीला होगा ही, लेकिन उसमें भी आपने कभी जड़ उखाड़ के देखी है? भाई पता तो हर चीज में ही, कोई भी बीमारी होगी मुरझाएगा, वो बीमारी कौन सी बीमारी है वो आपको वहाँ पे उसकी या तो तने के पास देखी, काला तो नहीं हो रहा, उखाड़ के देखी। क्यों? फंगस होती है।
4: अच्छा,
2: और कई बार क्या होता है, अभी मिट्टी मान लो आपकी बाड़ू मिट्टी है, ज्यादा गर्मी, पिछले दिनों में काफी गर्मी रही है, 45 डिग्री 42-43 तक तापमान गया है, और बरसात में तो वो वैसे ही समस्याग्रस्त रहता है टिंडा।
4: कहीं बरसात भी ना हुई है जी, बरसात पहली एक बार पहला बोई थी शुरू में फागण में, उसके बाद में फिर बोई हुआ ना बड़ी बेल है, खीरा बोया था, खीरा पीला हो गया बेल सूख गई।
2: वो तो एक बार या तो आप उसका निरीक्षण करें कि भी दिक्कत।
4: अच्छा,
2: कोई ना कोई ऐसा नहीं है कि भी पत्ता अपने आप पीला हो जाएगा, वो या तो उसे जड़ों में दिक्कत है या उसके तने में दिक्कत है।
4: अच्छा जी,
2: हाँ।
4: और एक घिया की बेल से बड़ी बड़ी हो रही है, पूरी बेल फैली है, लेकिन लग गई कुन्या, फिर उन्हें वो स्प्रे बताई कि वो स्प्रे भी कर दी।
2: देखो स्प्रे से नहीं है जी, वो क्या है, फूल तो आता है ना।
4: हाँ जी, फूल आ रहे हैं छोटे छोटे,
2: तो वो उस फूल के कणों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए भी तो जो कीट होता है ना, वो पीछे मौसम थोड़ा अनुकूल नहीं था, इसी को रखो भी, अब आगे शुरू हो जाएगा।
4: ठीक है,
2: स्प्रे की उसमें ज्यादा आवश्यकता नहीं है, स्प्रे वगैरह पे जाने की आवश्यकता नहीं है।
4: अब वो एक ने बताई थी, बोले स्प्रे कर दो, बोले थोड़ी सी मतलब फल फूल डट गया, फूल फल ना गिरेगा।
2: ना ना ना, वो
0: मौसम बताया होगा डॉक्टर साहब, वही थ्रेल का बताया।
2: हाँ
0: जी,
4: और एक जी को बी नावा लगा रखी है, क्या ना मूली, कानी होगी कोई मतलब सही से, और बाकी पत्ता ही सा होगा, स्प्रे मार दिया करे ना।
2: नहीं वो तो फिर आपने टाइम वाली नहीं ने मूली का

0: तो अब समय आग गए, आप लगाए मान लो पीछे
1: मूली जी
0: अगर
1: मन लगा दी थी, अब तीसरा महीना में।
0: तीसरा महीना भी मान के चलो 3 महीने हो गए,
1: हाँ जी
0: तो उसका तो समय ही आ गया ना। पीछे
1: हाँ,
0: बीच
1: वो
0: में
1: निकाल भी दी थी, निकाल दी थी, फिर दोबारा छोट छोट छोट रहेगी ना वो, बाकी गैल रहे उड़ी तू का यह कंडीशन रहेगी, मैं ये और जैसे पास से निकाल जाऊंगा।
0: ना ना, वो उसका टाइम भी हो गया और फिर पीछे बीच में लगातार एक गर्मी का फेज आ गया, इस वजह से
1: हाँ
0: दिक्कत रही।
1: यही कुछ रहा कि मगर स्प्रे स्प्रे करा किए
0: ना
1: करा
0: ना
1: कोई
0: ना
1: दवाई दुई
0: ना,
1: करा। ठीक
0: बिल्कुल भी नहीं
1: है जी, ठीक है।
0: जी।
1: और गोभी की प्योट बना जा,
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गोभी की तैयार कर लो आप, अगेती जो होती है ना
1: हाँ जी हाँ जी,
0: उनकी प्योत तैयार कर लो ताकि आप आगे बिजाई कर सकें उसकी।
1: जुलाई में कर जा।
0: हाँ अब प्योत लगाओगे तो जुलाई में लग जाएंगी वो।
1: और मूली की आ गए जो फसल करा वो जुलाई में हो जाएगी,
0: हाँ मूली की भी आप लगा सकते हैं।
1: जुलाई में। ठीक
0: हाँ अगेती गोभी हो जाएगी, मूली भी हो जाएगी, पूसा चेत
1: ठीक है
0: की
1: जी,
0: आती है
1: ठीक
0: जो गर्मी में लगाई जाती है।
1: हाँ जी, ठीक है जी
0: ठीक,
1: जी
2: धन्यवाद जी। तो हेलो,
3: हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार जी।
3: राम राम जी,
2: जी राम राम, नाम बताएं। राम
3: डॉक्टर साहब को भी
0: राम जी।
3: राम राम, मैं रामदारी गाँव फोगा जिला सरसीदारी।
2: जी जी रामदारी जी बोलिए।
3: एक तो ये भी चौथा दिन है, उस नाम दिया ही थी ना, तो
2: जी
3: वो बाड़ी के पत्ते जल गए, कैसे करे।
0: वो कोई बात नहीं जी, बाड़ी के अगर कुछ एक पत्ते जैसे मान लो जड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे निश्चिंत रहिए। और आपकी साइड मेरे ख्याल में फिर फुहारे का साधन होगा।
3: नहर
0: अच्छा नहर का है, तो आंधी आने के बाद थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी आई होगी।
3: तो आई है कल, बूंदाबांदी मारा भी खिल गया।
0: हाँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता ना करो कि भाई अगर कुछ पौधे 20 से 30% तक अगर पत्ते खराब भी हो जाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, कपास में कम से कम।
3: चलो अच्छा, फिर ये बाजरे का मतलब HSV 299 का
0: बहुत अच्छा है जी, आप इसकी बिजाई करिए।
3: डिजाइन, इसमें फिर खाद खुद DAP देनी पड़े क्या जी?
0: हाँ इसमें आप कैसे पानी लगाते हैं या कैसे है?
3: नहीं ये बारिश हो रही है ना जी, कल परसों बारिश होगी, 5-7 दिन
0: नहीं
3: है।
0: उसके बाद भी तो ये मान के चलो ना पानी की आवश्यकता तो एक और कम से कम चाहिएगा। आप इसमें नाइट्रोजन डाल सकते हो, मतलब शुद्ध नाइट्रोजन, या ये मानो अगर यूरिया के रूप में बताएं तो 50 किलो यूरिया और लगभग 100 किलो, 100 125 किलो सिंगल सुपर फास्फेट
3: अच्छा
0: SSP, ये आप प्रति एकड़ में डालिए।
3: क्या
0: औस तो इसकी 35 40 मण तक हो जाती है जी।
3: एकड़
0: हैं एक एकड़ एकड़
3: की
0: एकड़ एकड़ एकड़
3: है तो कपास हुआ तो कुछ नहीं चला, फिर हो
0: कितने?
3: जाएगा
0: हाँ ना कोई दिक्कत को नहीं, कितने दिन की होगी बीजी हुई आपकी?
3: ना
0: कपास की बिजाई किए हुए कितने दिन हो गए?
3: ये इसको करी थी 20 अप्रैल को करी थी,
0: हाँ
3: 2 महीने
0: तो
3: समझो
0: 2 महीने हो गए, तो उसके तो बोकी और थोड़ा बहुत फूल भी आ रहा होगा।
3: ना।
0: चलो अब आगे आएगा क्योंकि बरसात होगी। और उसमें
3: हाँ
0: खाद डाल दिया था आपने?
3: उस टाइम में ये DAP दी गई थी,
0: DAP डाली थी, अब बारिश अच्छी हो रही है उसकी अड़ाई करोगे तो उससे पहले आधा कट्टा यूरिया जरूर डाल दो प्रति एकड़ के हिसाब से।
3: अच्छा जी, वो तो बारिश हो जाएगी जब डालना है ये। हाँ
0: जब बाजरा बिजाई की और बारिश हो रही है
3: अच्छा
0: तो अड़ाई से पहले उसमें आधा कट्टा अगर आप खाद का यूरिया का डाल के अड़ाई कर देंगे तो लाभकारी रहेगा कपास के लिए भी।
3: अब डाल दें। हाँ
0: हाँ, उसको डाल के और उसकी अड़ाई कर दो।
3: राई तो बत्तर आ जाएगी 1-2 दिन में जब कर देंगे।
0: हाँ बस एक दिन पहले डालो और उसी दिन, उस दिन या अगले दिन अड़ाई कर दो। शाम के टाइम डालना।
3: हाँ शाम के टाइम करना
2: है जी। जी धन्यवाद।
3: अच्छा राम राम जी।
2: राम राम। तो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे हम अपना जो कपास में अपना देखना ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे।
4: हाँ।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी चंडीगढ़ से रिले किया जाएगा।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों से सिकल सेल रोग को हल्के में न लेने की अपील की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा के डेरा बाबा घूमण शाह में आयोजित कार्यक्रम में योग अभ्यास किया। कहा, सरकार योग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं, सरकार हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए मजबूती से खड़ी है। हरियाणा में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पंचकुला में होने वाले राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम के लिए प्रायोगिक अभ्यास किया गया और हरियाणा सरकार ने नीट पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को निशुल्क बस सुविधा देने की घोषणा की। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज सिरसा के डेरा बाबा घूमण शाह में आयोजित योग शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने डेरा के गद्दी नशीन बाबा ब्रह्मदास के सानिध्य में वहां मौजूद सैकड़ों लोगों और बाबा के अनुयायियों के साथ मिलकर योग अभ्यास किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने योग को बढ़ावा देने के लिए योग आयोग का गठन किया है। सरकार प्रदेशवासियों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य व रोग जीवन के लिए योग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: हम सब जानते हैं कि दो दिन के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरा विश्व मना रहा है। इस दौरान हमने प्रदेश के लगभग सभी जिलों में योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए हैं और इसी कड़ी में आज का ये योग अभ्यास कार्यक्रम यहाँ बाबा घूमण शाह जी के पवित्र भूमि पर आयोजित हो रहा है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, योग कर्मसु कौशलम्, कर्मों में कुशलता लाना ही योग है। हरियाणा का एक स्वस्थ समृद्ध और योग में राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज सिरसा में आम लोगों की शिकायतें सुनी। बैठक में 15 मामले रखे गए, जिनमें से 12 मामलों का मौके पर समाधान कर दिया गया। 2 शिकायतें अगली सुनवाई के लिए रखी गई हैं, जबकि एक मामले में शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की बहुत सी शिकायतें निपटाने के इंतजार में हैं, जिनको निपटाने के लिए लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं।
2: लोगों की जो शिकायतें हैं, अधिकारियों को ये स्पष्ट रूप से कहा है कि जो उनकी समस्याएं हैं उनको समझ करके देख करके तुरंत समाधान किया जाए। देखिए, लगभग 2023 ग्रीवेंस पेंडिंग थी, उसके बारे में कहा है कि इतना लंबा समय क्यों रोकी गई, उसकी सारी जांच करने के बाद कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है। अगर किसी की कोई समस्या है उसका समाधान करना, अगर उसके अंदर कोई दिक्कत है उसको बताना।
0: कानून व्यवस्था के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं है, सरकार हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए मजबूती से खड़ी है। पंजाब में चुनाव पर उन्होंने कहा कि वहां भी मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर हर वर्ग को जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसकी चर्चा पंजाब में भी है। केंद्र सरकार के गौरवशाली 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सिरसा के पंचायत भवन में जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को सीधे आम जनता तक पहुंचाना और उन्हें जागरूक करना था। शिविर में स्वास्थ्य, कृषि, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों ने अपनी स्टॉल लगाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से विभागों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की प्रगति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा में 21 जून को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पंचकुला में राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में 11 देशों के लगभग 70 विद्यार्थी भागीदारी करेंगे। इस उपलक्ष्य में आज प्रायोगिक अभ्यास किया गया, जिसमें पंचकुला के उपायुक्त सतपाल शर्मा, विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, विद्यालयों, महाविद्यालयों के विद्यार्थियों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों व शहर की योग से जुड़ी संस्थाओं ने भाग लिया। इस दौरान योग प्रोटोकॉल के अनुसार सभी योगासनों का अभ्यास करवाया गया। हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉ. जयदीप आर्य ने बताया कि इस वर्ष राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन योग से निरोग हरियाणा थीम पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेंगे। वे हरियाणा में योग को लेकर एक ऐतिहासिक घोषणा भी करेंगे। हरित योग के चलते प्राकृतिक संरक्षण का भी संदेश दिया जाएगा और एक भव्य प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।
3: यहाँ पर एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जा रहा है, जहाँ विभिन्न योग संस्थाएं अपने अपने कार्यों के विषय में बताएंगी। प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक खेती की बात भी लोगों को बताई जाएगी कि योग भी आवश्यक है और उतना ही आवश्यक आहार भी है। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु, तो युक्त आहार की भी हम चर्चा करेंगे।
0: इस मौके पर उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सहित विभिन्न मेहमानों द्वारा 11 औषधि पौधे भी लगाए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में निशुल्क बस सुविधा की घोषणा की है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह सुविधा 20 जून को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने और 21 जून को आने जाने के लिए मान्य होगी। सुविधा का लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थियों को अपना नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। कुरुक्षेत्र में आज उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने नीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने परीक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे, जैमर एवं अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध करा दिए गए हैं। सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी।
4: नीट एग्जाम कुरुक्षेत्र में 5 सेंटरों पे एग्जाम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 2200 के करीब बच्चे शामिल होंगे। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्थाएं रहेंगी। बच्चा स्ट्रेस फ्री माहौल में एग्जाम दे, तो उसके लिए हमने कुरुक्षेत्र में 4 धर्मशालाएं आइडेंटिफाई की है। हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सूची शेयर करें। दिन पहले अगर आके आराम करना चाहे, रुकना चाहे, तो उसकी व्यवस्था की है। साथ ही सुबह हमारी रोडवेज की बसें इन सेंटर्स पे लगातार उनकी फेरियां बढ़ के चलेंगी, ताकि किसी भी बच्चे को सेंटर को ढूंढने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो।
0: उपायुक्त ने कहा कि पेयजल, शौचालय तथा बिजली जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं की उचित व्यवस्था भी की जाएगी। भारतीय रेलवे ने भी नीट परीक्षा को लेकर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। अंबाला रेल मंडल ने संभावित भीड़ वाले स्टेशनों पर विशेष इंतजाम करने का फैसला लिया है, ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अंबाला मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक यशनजीत सिंह ने बताया कि रेलवे बोर्ड एवं मुख्यालय स्तर पर नीट परीक्षा की तैयारियों की लगातार निगरानी की जा रही है।
5: नीट के एग्जाम की जो तैयारी है बिल्कुल टॉप लेवल से उसको मॉनिटर किया जा रहा है। हेडक्वार्टर भी और रेलवे बोर्ड भी इसके बारे में सारी डिविजन से और सारे जोन से वीसीज कर रहा है। बठिंडा, मोहाली, चंडीगढ़ और सहारनपुर और पटियाला, ये चार स्टेशन हमें लग रहे हैं कि जहां ज्यादा भीड़ आएगी। इसके लिए हमने दो स्पेशल ट्रेन का प्रस्ताव रखा है जिसमें से बठिंडा से चंडीगढ़ ऑलरेडी अप्रूव हो गई है, दूसरी सहारनपुर से चंडीगढ़ भी आधे दिन में वो अप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा स्पेशल हेल्प डेस्क उनको प्रोवाइड किए जाएंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों से सिकल सेल रोग को हल्के में न लेने की अपील की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
6: आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।
7: शुक्ला, आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशु जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक 12 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही है और इसमें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा और खासतौर पर हम जो पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे आप किस तरह से देखते हैं कि वैश्विक परिवेश में, परिदृश्य में किस तरह से इसे एक नई दिशा दी गई है।
8: विगत 12 वर्षों में हमने भारत की यदि विदेश नीति और आंतरिक नीति की दृष्टि से देखें तो वैश्विक राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है, उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं। और इसके पीछे कारण है, उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश हैं, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड की, कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया। एक रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा। तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक नेचुरल अलाय वर्षों से हैं, उस यात्रा को हम जारी रख पाए, और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं लेकिन हमारी विदेश नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है। और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
7: बिल्कुल अंशु जी, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया, क्या लगता है आपको कैसा बदलाव रहा है, ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही हैं?
8: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब शीत युद्ध चल रहा था जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न यूएसएसआर के ब्लॉक के साथ न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट्स हैं या हित हैं, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाए, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल अलाय हैं रशिया के, दूसरी और अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया, और वहीं एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा। और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें, या सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए, हम अफ्रीका के देशों के पास गए, इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये अविकसित देश हैं। तो इनके साथ भारत ने एक रोडमैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू की, एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया। हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की, तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत 12 वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं, तो वो ये है कि हम एक तरफ राष्ट्रप्रथम की भावना के साथ, लेकिन विश्व बंधुत्व का दर्शन रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं, या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को लगातार पल्लवित पोषित करता है, तो फिर वहां पर भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो, जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो, लेकिन दूसरी ओर द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता आ गई, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहाँ पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
7: बिल्कुल, जाहिर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल हुई उसके बारे में अंशु जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नथैलस साहब का। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
9: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट का काफी प्रभाव पड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन अब जो है, पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओइस्ट को ख़त्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए CRPF और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफ़ी जोर लगाकर, खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे, इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए, और उन ऑपरेशन में कई माओवादियों को मार गिराया, और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5,000 माओवादी पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपये दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफ़ी तादाद में माओइस्ट अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसके वजह से माओइस्ट का बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहाँ इनके नेता भी जो थे, वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया और इसके वजह से माओस तकरीबन ख़त्म ही हो गए। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में, जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब यह चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं और ये मिसर बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं, और ऑपरेशंस भी कोबरा के बड़े जोरों से जारी है और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8,000 जो मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट्स थे, बोडोस के इंसर्जेंट्स थे और आसाम के भी इंसर्जेंट थे, और उसके अलावा मणिपुर में जो UNLF के इंसर्जेंट्स थे सब ने सरेंडर किया है। और उनके सरेंडर करने के बाद काफ़ी मात्रा में वहाँ पर हथियार ख़त्म हो गए और इंसिडेंट भी ख़त्म हो गए, और उस वजह से काफ़ी वहाँ पर शांति फैलाया गया उस इलाके में, और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है, और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फ़ायदा चल रहा है। पहले यह डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे क्योंकि आतंकवाद ने काफ़ी ज़ोरों से वहाँ पर कब्जा मार के रखा हुआ था, और इसको ख़त्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है, सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है, और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए हैं कई जगहों में, और जिनके वजह से अब वहाँ पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफ़ी सुविधा पहुँच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफर कर सकते हैं।
7: इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में हम किस तरह से और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है?
9: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं, और वो आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ से हथियार बन रहे हैं और ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा पहले जो हम हथियार मंगा रहे थे बाहर से, उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। करीबन 5,500 डिफेंस आइटम्स जो पहले हम बाहर से मंगाते थे वो हमने मंगाना बंद कर दिया, और अपने ही देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे देश के इकोनॉमी को हो रहा है, और उस वजह से जो युवक हैं उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में। तो इस तरीके से काफ़ी नौकरियाँ अभी लोगों को मिल रहे हैं, 15 लाख जवानों को इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
7: बिल्कुल, अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीजों का एक फायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को, तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
8: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूँ कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण FTA है, और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया और ये एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ये डिफेंस पैक्ट ईयू ने साइन किया है। अब इस एफटीए के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन। तो यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए, अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड है ईयू के सदस्य देशों के साथ उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और एफडीआईज में इजाफा, तो इससे ओवरऑल जीडीपी में बढ़ोतरी। और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप यूएई के साथ के अपने एफटीए को और हमारी व्यापारिक डील को देखें तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ जो कि लैटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी एफटीए को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से जीसीसी के देशों के साथ भी हमारा एफटीए लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं, तो पहले हम एक नेट इम्पोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बनके इस एक डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में विशेषकर हमारे होम ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे, और भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट है, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स हैं। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब हमने 150 देशों को अपने यहां के वैक्सीन भेजे, तो उस समय के ब्राजील के, ये उदाहरण है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाया और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप नहीं जानते आपने ब्राजील के लिए क्या किया। इसके बाद ब्राजील के साथ हमारा एक अलग स्तर पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और पार्टनरशिप शुरू हुई। तो हमने जब सोरल अलायंस और बायोफ्यूअल अलायंस की स्थापना की, इसको पायनियर किया, तो ब्राजील उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोगी देश बनकर के सामने आया। तो ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ, पॉजिटिवली किसी दूसरे देश के लिए अच्छा करते हैं, तो उसके कुछ ऐसे आउटकम्स आते हैं जो फिर हमारी जो ये लंबी सुदीर्घ विकसित भारत की यात्रा है उसमें हमें योगदान करते हुए नजर आते हैं। मैं अमेरिका का उदाहरण दूं, अमेरिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में लेमोवा, कॉमकासा और बेका नाम के लॉजिस्टिक सप्लाईज को लेकर के हुए बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं, और अमेरिका ने अपना रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस भारत को देना शुरू किया जो कि ऐतिहासिक है। तो ये काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स की दृष्टि से देखें या अपने सामरिक क्षेत्र में अपर हैंड की दृष्टि से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे क्वाड का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो, एससीओ का मंच हो, इप्सा हो, तो I2U2 की हम बात करें, तो भारत जिस प्रकार से अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स के चलते आगे बढ़ा है, तो उसमें ग्लोबल साउथ की हमने आवाज मजबूत की, एक पुल के रूप में हम पश्चिम के देशों के और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक साथी बन करके आए, और इसके अलावा हमने हमारे मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए विकसित भारत 2047 की यात्रा के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स जो है वो अकम्प्लिश किए हैं।
7: और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी को एक टफर निगोशिएटर कहा, क्योंकि जब तमाम बायलेटरल ट्रेड समझौतों की जब बातचीत हो रही, तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक ये डील नहीं होनी चाहिए।

0: और भारत का सामान, मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना, वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
1: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा, और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है। और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर है, तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं तो उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें, और दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम एशिया के देशों या मंचों के साथ अपने एफटीएस को देखें, आप हाल ही में हुए ईयू के साथ के अपने एफटीए को देखें, आप दूसरे जो एक दर्जन भर के लगभग अपने एफटीएस हैं और अलग अलग जो सेपा है, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक हमारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कई देशों के साथ में, तो हमने इस बात को जब नेगोशिएशन के लिए स्टेक होल्डर्स बैठते थे तो इस बात को हमने स्पष्ट किया था कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर किसी के लिए नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है। हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं, या जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, फिशरीज से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योग और विशेषकर जो भारतीय कला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे नए नए बाजार मिल सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सके, ये भी जब भी हमने आर्थिक और तकनीकी कूटनीति के हमने समझौते किए हैं या इसको लेकर हम आगे बढ़े, तो वहां प्रधानमंत्री ने इसकी बात की है। तो आखिरकार जब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील अनाउंस हुई तो उसमें फिर ये बात स्पष्ट होकर के आई कि इन दोनों बिंदुओं पर भारत ने किसी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं किया। और वहीं जैसे रूस से जो तेल और गैस लेने की बात है, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमें रूस से तेल और गैस मिल रहा था, तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजंस लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से मित्र बनाए हैं, तो हमने इन सबसे सहायता ली, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, अपने एक मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस को फिर हमने बढ़ाया, और इसके चलते देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा हम पर जब प्यूनिटिव टैरिफ्स लगे और बड़ा हल्ला मचा था कि अब क्या होगा और नुकसान होगा और अब हम क्या करेंगे, लेकिन आप देखिए कि हमने 7% से ज्यादा और फिर 8% की क्वार्टरली हमने जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर की थी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रोथ रही। तो ये इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ में इस प्रकार के अलग अलग अकम्पलिशमेंट्स के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
0: अब हम रुख करते हैं एमपी नथालस आपका, उनसे पूछते हैं कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेड कॉरिडोर से ग्रीन जोन में बदलने की रणनीति अपनाई गई थी और वहां भी कामयाबी हासिल लगी, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संवाद और समन्वय के भी परिणाम सामने आए। तो आपसे जानना चाहेंगे जो एक और 3 बड़े ऑपरेशन हुए थे, उरी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों का, तो ये 3 जो बड़े एक्शन रहे हैं, इसको भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन ऑपरेशंस ने किस तरह से परिभाषित किया और क्या मायने आप देखते हैं यहाँ पर जो एक एक्शन रहा?
2: इसमें सबसे बढ़िया चीज ये था कि जैसे ही वो कहीं इस तरह के वारदात कर रहे थे, जैसे कि अटैक किया उन्होंने कॉन्वॉय सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर, उरी में अटैक किया और उसके बाद जो पहलगाम में अटैक किया, हमने तुरंत उसका जवाब दिया। ये नहीं कि हम रुके रहे सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके के हरकत अगर आप करेंगे तो हमारा कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था, जिसके बाद ऑफ सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवाद टॉप के उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी ख़त्म कर दिए गए। हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके वहाँ पर अटैक किया और उनका खात्मा किया, जिसके वजह से उनमें काफ़ी ढीलपना आ गया, अब वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफ़ी बार सफल हुए। मैं खुद वहाँ श्रीनगर में रहा हूँ, गए दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफ़ी सुधर गए हैं और सुधरने की वजह से ये है कि वहाँ पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है और यहाँ तक कि डेवलपमेंट

0: ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही हैं। पहले ये सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट हो गया रेलवे से। पहले हमें सिलचर जाना पड़ता था, सिलचर से फिर बाई रोड जाना पड़ता था। अब जो है रोड कनेक्टिविटी इतना बढ़िया हो गया थ्रू रेलवे कि लोग सीधे ऐजवाल तक पहुंच सकते हैं दिल्ली से लेकर वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफ़ी बड़ा फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफ़ी इसमें सुविधा पहुंची है। इसके अलावा ये है कि जब भी वहाँ से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहाँ पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफ़ी लाभ पहुँच रहा है और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफ़ी पीसफुल सिचुएशन है, अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफ़ी तादाद में फोर्सेस पहुंच रहे हैं वहां पे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहां पर कई जिलों में जहां आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा क्योंकि इतना वहाँ पर शांति फैल चुका है कि AFSPA की बाद में ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
1: सर, क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में या आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ आज पाते हैं?
0: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे ही उनका कोई कार्रवाई वो वहाँ से करने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो हमारे जवानों पे या हमारे इलाके के अंदर आके हमला ना कर पाए।
1: इतने दिनों में भारत की एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, हम चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
0: ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफ़ी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनके जितने भी अटैक करने की कोशिश की गए वो सब विफल कर दिए क्योंकि हमारे पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था जिसके वजह से उनके जितने भी अटैक्स हो रहे थे वो विफल कर दिए गए और हमें ज़्यादा उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता जो कि शील्ड जैसे बन गया था तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता था, लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हम लोग उनको रोक पाए और वो नुकसान नहीं कर पाए।
1: प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका विकसित भारत की तरफ है, इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?
2: देखिए, जब हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश नीति है, विगत 12 वर्षों में हम जिस तरह से एक ऑल अलाइंड पॉलिसी पर चले हैं, इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। तो भारत के यदि हम आर्थिक विकास की ओर देखें, तकनीकी प्रगति की ओर देखें, वैश्विक सुरक्षा, अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो हमारी विदेश नीति जो है इसके माध्यम से हम इनसे जुड़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए लगातार अपने विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है, मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले। तो यदि हम अपने आर्थिक मोर्चे पर जाएं और अपनी आर्थिक कूटनीति की बात करें तो विकसित भारत 2047 को यदि हम देखते हैं तो हमारी विदेश नीति का एक बड़ा जो फोकस एरिया रहा है वो FDI रहा है। किस तरह से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, मैंने लगातार अलग अलग FTAs का उदाहरण दिया जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले तो चाहे AI की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें तो AI समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जिसमें देश विदेश से कई राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और AI को लेकर के जो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है उसमें भी भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। फिर आप सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में चले

0: चाहे यूरोप के शक्तिवान देशों को आप देखें या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हमारे समकक्षी देशों को देखें। तो यूएनएससी जैसे संस्थानों में भारत लगातार भारत जैसे देशों के नेतृत्व की मांग कर रहा है, और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए, तो वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस बात को फिर पुरजोर तरीके से रखा कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो एक वैश्विक समर्थन जो है वो आज हमें हासिल हुआ है, और ये विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हमारे लिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी नेतृत्व की भूमिका बढ़े। फिर यदि हम अपनी रक्षा की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, तो आसपास एक फ्लक्स की सिचुएशन है, दो युद्ध चल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार तनाव बना रहता है। इन सब के बीच हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से लगातार हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे, और अभी पश्चिम एशिया की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जिस तरह से ईरान ने बंद किया और पूरी दुनिया ने संकट को झेला, 40% लगभग तेल, गैस और एलपीजी पूरी दुनिया को सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के माध्यम से, और कुल जरूरत का 80-90% अपना तेल, गैस और एलपीजी चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल, गैस और एलपीजी मंगाने का हमने पिछले 12 वर्षों में ये काम किया, और अपनी जो ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए, तब जबकि दूसरे देशों में 40-60-70% तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनके उभरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था। फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम हिंद महासागर के जो लिटोरल देश हैं और जो इंडायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं वो सब आज भारत को प्रणेता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं, और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं जो हमारे लिए, हमारी जीडीपी के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वाहक हैं, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण को भी हमने एक प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया, और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल, और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्प्लिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत 2047 के सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें, तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित भारत के विजन को, मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
1: आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्र प्रथम की नीति रही है भारत की, शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं अपने नागरिकों की बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक नीति इसने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानती हैं?
0: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं, और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं, भारतीय प्रवासी जो हैं, उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक संतुलन बना के रखते हैं, और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु आतंकवाद पर जिस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म, तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है। ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है, और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है, और इसके चलते, इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
1: बिल्कुल। तो अंशु जोशी जी और एमपी नाथाले साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे

सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कायरो तक केंद्र है। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाने जा रहे हैं जाबाज फिल्म से किशोर कुमार और सपना की आवाज़ों को। गीत के बोल लिखे हैं इंदीवर ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं लीजिए सुनिए परिचय फिल्म से किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजों को। गीत गुलजार का लिखा हुआ है और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

ए बिच्छू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत जो आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म सरस्वती चंद्र से। आवाज़ें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की। गीत के वो लिखे हैं इंदीवर ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

मेरे हमसफ़र। श्रोताओं लीजिए सुनिए इस फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों को। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को स्वरबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

दो रास्ते। श्रोताओं लीजिए सुनिए इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ को। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं संगम फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों को। गीत शैलेंद्र का लिखा हुआ है और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

वो कौन थी, आइए सुनते हैं इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज को। गीत के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया है जयदेव ने।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। श्रोताओं, कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं हम दोनों फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया है जयदेव ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे गुलाम अली की गाई गजलें। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। इस समय रात के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर MQ खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
5: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
4: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
6: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है। और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
4: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
8: This is the country. यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
1: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Spotlight.
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सफर के गीत। फिल्म के गीत लिखे हैं इंदीवर ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी का। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से, आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सफर के गीत। कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे फिल्म सफर के गीत। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रोहतक के प्रसारण। श्रोताओं लीजिए सुनिए नाटक तिमिर बीज। लेखक हैं अमृतलाल मदान, संयोजक राकेश कपिला और प्रस्तुति श्याम गुप्ता की है।
1: क्या बात है, बार बार करवटें क्यों बदल रहे हो? नींद नहीं आ रही क्या?
2: आ जाएगी, तुम सो जाओ रमा।
1: ये क्या, तुमने फिर उधर मुंह कर लिया? आखिर बात क्या है?
2: अरे कुछ भी तो नहीं है।
1: कुछ भी तो नहीं, पर कब से तो अंधेरे में गुमसुम से पड़े हो बेचैन आत्मा की तरह। उफ़ो, फिर कहते हो
2: कि कहा तो है, कुछ भी नहीं है मुझे। प्लीज रमा सोने दो।
1: अच्छा, जरा इधर तो खिसक आओ, तुम्हारे बाल सहला दूं। कितने दिनों के बाद आई हो ना घर।
2: ओह प्लीज प्लीज रहने दो।
1: अच्छा, मैं ही आ जाती हूँ तुम्हारे पास। हाँ, अब बताओ, रात को देर से घर क्यों आए? कहाँ गए थे? बच्चे भी सो गए इंतजार करते करते।
2: बताया तो था, दफ्तर में काम करना था प्रोजेक्ट से लौटकर।
1: झूठ मत बोलो, सच बताओ, क्या तुमने दफ्तर से फोन किया था कि देर से घर आओगे?
2: हाँ हाँ, दफ्तर से ही तो किया था।
1: झूठ, बत्ती जलाकर देखो तुम्हारा चेहरा।
2: अरे मैं झूठ नहीं बोला करता।
1: मैं बताऊं तुम कहाँ गए थे?
2: हाँ, बताओ।
1: तुमने फोन किसी अस्पताल से किया था, है ना?
2: अस्पताल? नहीं तो, तुम्हें वहम हुआ है।
1: पहले तो तुम्हारे ऑफिस से मरीजों के कराने या सिस्टर के चिल्लाने की आवाजें नहीं आती थी फोन पर।
2: ओफो, हाँ बाबा हाँ, मैं अस्पताल में ही था।
1: क्यों, क्या हुआ था तुम्हें? पहले क्यों नहीं बताया?
2: मुझे कुछ नहीं हुआ था। वो मेरे कुलीग है ना मिस्टर शर्मा, वो एक दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गए थे शाम को ऑफिस से बाहर निकलते हुए। बस वो हम सब उन्हें हॉस्पिटल ले गए थे।
1: तो इसमें छुपाने की क्या बात थी? मुझे सच सच बता दिया होता।
2: वो खून की जांच करने पर पता चला कि मेरा खून उनसे मिलता है।
1: ओहो, तो तुमने मुझे इसलिए सच नहीं बताया कि कहीं मैं तुम्हें खून देने से मना ना कर दूं? यही बात थी ना?
2: शायद इसीलिए।
1: लगता है बहुत खून दिया है तुमने, तभी चेहरा पीला पड़ा हुआ है।
2: नहीं नहीं, मुझे खून नहीं देना पड़ा।
1: क्यों?
2: क्योंकि क्योंकि जब तक शर्मा जी के कुछ रिश्तेदार पहुंच गए थे, उनमें से एक का खून।
1: शुक्र है तुमने खून नहीं दिया। तुम कितने अच्छे हो रमेश।
2: ओफो, ये क्या करती हो रमा? पर हटो, अपने बिस्तर पर जाओ तुम।
1: ओफो, ये क्या हो गया है तुम्हें आज?
2: अरे प्लीज प्लीज रमा, मुझे सोने दो, थका हुआ हूं मैं।
1: पर पहले तो इतनी बुरी तरह से कभी नहीं धकेला मुझे।
2: ओफो, सुनो रमा सुनो, मैं तुम्हें कुछ, प्लीज प्लीज सो जाओ रमा प्लीज।
1: तुम कुछ कहना चाह रहे हो रमेश?
2: नहीं नहीं, कुछ नहीं कहना है मुझे, प्लीज जाओ तुम।
1: अरे तुम तो कांप भी रहे हो, ठंड लग रही है क्या?
2: ओफो, हाथ मत लगाओ मुझे प्लीज।
1: आखिर बात क्या है रमेश, पत्नी हूं मैं तुम्हारी, कोई पराई औरत नहीं जो इस तरह।
2: ओ रमा रमा प्लीज प्लीज, तुम कुछ नहीं जानती हो मेरे बारे में।
1: क्या नहीं जानती मैं तुम्हारे बारे में?
2: जो जो मुझे भी आज ही पता चला है।
1: सब जानती हूं मैं।
2: क्या?
1: कि तुम हो मिस्टर रमेश चंद्र जूनियर इंजीनियर बाढ़ नियंत्रण प्रोजेक्ट, दो प्यारे प्यारे बच्चों के पिता और मेरे प्यारे प्यारे पति, जिसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं, सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव।
2: पॉजिटिव? हाँ, और HIV पॉजिटिव हूं मैं।
1: क्या?
2: हाँ रमा, खून की जांच करने पर पता चला कि
1: तुम्हें एड्स है। तभी नहीं नहीं नहीं, रमेश कह दूंगी ये झूठ है।
3: मम्मी मम्मी मम्मी, आप अंधेरे में चीख क्यों रही थी?
4: मम्मी क्या हुआ आपको? बत्ती चला दो, हमें डर लग रहा है।
1: पिंकी लक्की खड़े रहो वहीं, अंदर मत आना, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास।
2: अंदर आ जाओ बच्चों।
3: अरे पापा,
1: पर तुमसे अभी नहीं मिलेंगे, बीमार है वो।
2: रुक जाओ रमा, कहाँ जा रही हो?
1: छोड़ दो मुझे, आगे से मुझे छूना भी मत। बच्चों के कमरे में सोऊंगी मैं अब, चलो बच्चों।
2: ओह, चली गई रमा, जैसे कि मैं कोई भूत हूं या प्रेत। ये कैसा पंछी है जो इस भयानक अंधेरी रात में आ बैठा है हमारी मुंडेर पर सन्नाटे को गहराता हुआ। चुप करो, मैं कहता हूं चुप करो। लगता है अब ये कभी चुप नहीं होगा, मुझे ही चुप होना पड़ेगा। सदा के लिए, सदा के लिए चुप होना पड़ेगा मुझे।
1: मैं कहती हूं चुप करो।
5: यू शट अप।
1: क्यों श्रीमती रमा देवी जी, बहुत गर्व था ना अपने पति की वफादारी पर? सब पोल खुल गई अब। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा रमेश किसी ऐसी वैसी औरत के साथ। औरत या औरतें? औरतें भी तो हो सकती हैं, दूर उस बदनाम इलाके की जिसमें कई कई दिन तक तुम्हारा पति अकेले। पर रमेश तो प्रोजेक्ट पर जाते थे वहां। नहीं नहीं, मेरा पति ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है, नहीं तो एड्स कैसे लगती उसे भला? फिर तुम्हारा पति सुंदर है, जवान है, ऊपर की कमाई भी कमाता है। क्यों चुप क्यों हो गई श्रीमती रमा देवी जी? मैं अभी जाकर सच सच पूछती हूँ उससे। बहुत भोली बनती हो, जैसे कि वो सच सच बता ही देगा। पर रमेश ने अब तक मुझसे कुछ नहीं छुपाया। हाँ, हर मर्द में, हर पति में बहुत कुछ नेगेटिव भी होता है जो अंधेरे में रहता है, फोटो के नेगेटिव की तरह। मैं अभी जाकर बात करती हूँ, पर जरा दूर से ही बात करना, कहीं तुम्हें भी उससे।
2: ओह, चुप क्यों नहीं करते तुम?
1: वो तो फिर भी चुप हो जाएगा, पर मैं चुप नहीं रहूंगी।
2: रमा, रमा प्लीज प्लीज मेरे पास आकर बैठो।
1: मैं दूर ही ठीक हूँ, दरवाजे पर।
2: ओह रमा, मैं जानता हूँ, मेरे शरीर पर बिच्छू बूटी उगाई है एक विषैले काले बीज से फूटकर।
1: सच सच बताओ रमेश, कितनी औरतों से संपर्क हुआ है तुम्हारा?
2: रमा,
1: दो दो बच्चों के पिता होकर भी शर्म नहीं आती तुम्हें?
2: बंद करो ये बकवास रमा, शर्म तुम्हें आनी चाहिए ये लांछन लगाते हुए मुझ पर।
1: अंधेरे में मुंह तुमने छुपा रखा है रमेश, मैंने नहीं।
2: लो लो, बत्ती जल गई, ये पढ़ लो मेरा चेहरा, क्या झूठ बोल रहा हूं मैं?
1: तो फिर कहां से मोल ले ली तुमने ये नामुराद बीमारी?
2: मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा रमा, खुद समझ में नहीं आ रहा।
1: जहां तुम्हारा प्रोजेक्ट चल रहा था, सुना है वहां ऐसी वैसी
2: औरतें। रमा रमा, तुम मुझे आखिर समझती क्या हो, कोई जानवर हूं मैं?
1: पहले नहीं समझती थी, लेकिन अब।
2: ओ फॉर गॉड से प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझो रमा, मत करो मेरे साथ ये अन्याय। मुझे तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत है अब।
1: और जो अन्याय तुमने मेरे साथ किया है वो, क्या पता मुझे भी तुमसे ये बीमारी।
2: रमा
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
2: धीरे बोलो रमा, धीरे बोलो, बच्चे उठ जाएंगे। मैं सच कह रहा हूँ रमा, मैं नहीं जानता कि कैसे हुआ ये सब। आओ रमा प्लीज प्लीज मेरे पास आकर बैठो, चाहे चाहे छूना मत मुझे, लेकिन
1: नहीं, तुम्हारी सांस में भी जहर घुला हुआ है। मैं जाती हूँ बच्चों के पास।
2: रमा,
1: कल मुझे भी जाकर जांच करानी होगी।
2: रमा रमा, ओह फिर चली गई, लगता है अब कभी नहीं आएगी। और मैं अपने ही घर के एक कोने में अलग अलग पड़ा रहूंगा, शायद कोई भी नहीं फटकेगा मेरे पास।

0: गुड मॉर्निंग पापा।
1: ओह मॉर्निंग मॉर्निंग, आओ बच्चों आओ मेरे पास बैठो यहाँ। गुड, तुम्हारी मम्मी कहाँ है?
2: नहाने गई है बाहर वाले बाथरूम में।
1: पर वो तो तुम्हारे स्कूल जाने के बाद नहाती थी ना, आज इतनी जल्दी क्यों?
3: पता नहीं पापा, साबुन भी नया निकाल कर ले गई है अलमारी से।
2: हा? अरे कल ही तो नया साबुन निकाला था।
3: कहने लगी पापा वाला साबुन यूज मत करना
2: और उस वॉश बेसिन

0: यहां? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि पापा की किसी चीज को मत छूना, पर तुम तो उनके बिस्तर पर ही।
1: ओ रमा, इन्हें मेरे पास बैठने दो प्लीज।
2: मम्मी पापा लड़ाई लड़ाई माफ करो, दिल की मैल साफ करो।
3: हाँ पापा, आप ही मम्मी से सॉरी कह दो ना प्लीज।
4: लो, मैं ही पापा के कान पकड़कर सॉरी कह देती हूँ।
0: पिंकी, खबरदार जो पापा को छुआ
1: रमा
0: या इनके नजदीक भी आए तुम, चलो यहाँ से। तुम्हें मना किया था ना कि वो बीमार है और फिर भी तुम चलो।
4: सॉरी मम्मी, हम पापा को दूर से ही देख लिया करेंगे
3: और फोन पर बात भी कर लिया करेंगे।
5: देखो रमेश, पहली बात तो ये है कि एड्स कोई बीमारी है ही नहीं अलग से।
1: डॉक्टर गुप्ता, फिर लोग डरते क्यों हैं इतना इससे?
5: रमेश, इसलिए कि इससे संक्रमित रोगी के शरीर में अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है।
1: ओ।
5: अच्छा भाभी तो अभी रसोई में है ना?
1: हाँ।
5: वो तुम मुझे सच सच बता दो, क्या तुमने कभी दूसरी औरत के साथ यौन संपर्क किया अपने लंबे दौरे के समय? हो सकता है उनमें से कोई HIV पॉजिटिव इन्फेक्टेड हो।
1: डॉक्टर गुप्ता, आप सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं, हमारे पड़ोसी भी हैं, मित्र भी, फिर आपसे क्या छुपाना? क्या आप किसी और तरीके से इसका संक्रमण नहीं हो सकता?
5: हो सकता है जब
0: लीजिए भाई साहब। हाँ। पहले चाय पीजिए, फिर बातें होंगी।
5: अरे भाभी जी, रमेश के लिए चाय नहीं लाई आप?
0: इन्हें बाद में दे दूंगी,
1: अलग कप में। देखो मेरे नाश्ते के बर्तन भी अभी इस कोने में पड़े हुए हैं, अलग अछूत से।
5: पर भाभी, एड्स उन अर्थों में छूत की बीमारी नहीं है।
0: बीमारी तो बीमारी है, सावधान तो रहना ही चाहिए ना बच्चों वाले घर में। पर भाई साहब, ये बीमारी इन्हें लगी कैसे?
5: अच्छा रमेश, क्या तुमने बाहर खून चढ़वाया था कभी?
1: नहीं, नहीं तो, बल्कि पहले दो बार खून दिया जरूर है, उससे भी रमा नाराज हो गई थी।
0: मुझसे छुपा कर किया था ना तुमने रक्तदान। हाँ। इसलिए बहुत कुछ चोरी चोरी करते हैं ये।
5: अच्छा अब तुम रक्तदान नहीं करना, बिल्कुल नहीं।
1: क्या इंजेक्शन की सुई के द्वारा भी संक्रमण संभव है डॉक्टर गुप्ता?
5: हाँ, अगर सुई खूब खोलते पानी में डालकर स्टरलाइज्ड ना की गई हो। पर मैंने तो हमेशा स्टरलाइज्ड किया है उसे, जब भी तुम्हें इंजेक्शन लगाया है।
1: ओह, अब याद आया डॉक्टर गुप्ता, पिछले दौरे में प्रोजेक्ट साइट पर तेज बुखार हुआ था मुझे। पास के गांव के स्वास्थ्य केंद्र पर, हाँ वहां जाना पड़ा था मुझे।
5: अच्छा,
1: वहां के कंपाउंडर ने जब इंजेक्शन लगाया था तो ना तो उसने पहली सुई बदली थी और ना ही उसे उबाला था।
5: ओफो रमेश, जाने क्यों तुम जैसे पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की अनदेखी क्यों कर देते हैं?
0: और वो इलाका भी तो बदनाम बस्तियों का इलाका है।
5: समझ गया, उन्हें संक्रमित औरतों या मर्दों के साथ किसी प्रकार की सुई के इस्तेमाल करने से ऐसा हुआ है।
0: पता नहीं सुई से लगा है या किसी के साथ सोने से। मुंह में चाय की कड़वी पत्ती आ गई।
1: रमा, तुम फिर बकवास करने लगी हो, वो भी डॉक्टर साहब के सामने।
0: गुप्ता जी पराए नहीं हैं। फिर तुमने मुझे तो कभी नहीं बताया कि तुम्हें वहां बुखार भी हुआ था।
1: 3-4 महीने पहले की बात याद रहे ये जरूरी नहीं है।
5: तुम्हें पति पर यूं शक नहीं करना चाहिए रमा जी। अरे रोग का कारण
0: कुछ भी हो, पर मेरी और बच्चों की जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना भाई साहब। हाँ,
5: यूं हिम्मत हारने से कुछ नहीं बनेगा। किसी बड़े अस्पताल में इनकी जांच करवाएंगे, जब तक अच्छी तरह जांच नहीं हो जाती।
0: ओहो, लगता है स्कूल से आज बच्चे जल्दी आ गए। अभी आई मैं।
5: सुनो रमेश। हाँ। तुम्हें पत्नी के साथ शारीरिक संबंधों में बहुत सावधानी बरतनी होगी। अगर दो कंडोम एक साथ।
1: सावधानी तो मैं पहले ही बरतता हूँ डॉक्टर, दूसरे बच्चे के बाद से, लेकिन अब तो वो मेरे साइज

0: भी दूर भागती है।
1: नमस्ते गुप्ता
0: नमस्ते नमस्ते बेटे, पिंकी नमस्ते। आ गए बेटे स्कूल से तुम लोग?
2: अंकल। आ जाओ बच्चों, आ जाओ मेरे पास बैठो। अरे रमा,
0: क्या बात है भाभी जी, अरे तुम बच्चों को ये पीछे से क्यों धकेल रही हो?
3: आप तो सब समझते हैं भाई साहब, फिर भी पूछ रहे हैं।
0: अब समझा। रमेश उठकर बैठो जरा।
2: अरे ये क्या कर रहे हो गुप्ता जी, छोड़ो मुझे इतना कसकर।
0: अरे क्यों, दोस्त को गले लगाना क्या बुरी बात है? अच्छा मुंह खोलो
2: क्यों?
0: और ये लो बिस्कुट। अरे हाँ ध्यान रहे, अरे मुझे ना काट खाना। हाँ ऐसे, और अब ये मट्ठी तुम मेरे मुंह में डालो। हाँ डालो डालो डालो, ऐसे।
3: भाई साहब देखो, भाई साहब आपकी उंगलियों पर इनकी थूक लगी है और पसीना भी।
0: लो पोंछ लेता हूं, बाद में भी धो डालूंगा। दरअसल पसीने या थूक से कुछ नहीं होता जब तक संक्रमित थूक या रक्त स्वस्थ रक्त से ना मिले। चलो बच्चों अब तुम पापा से गले मिलो।
4: मम्मी हम पापा से गले मिल लें?
5: नहीं पहले मम्मी मिले।
3: पिंकी लक्की
5: डॉक्टर अंकल, क्या मैं भी पापा को मट्ठी खिलाऊं?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं बेटे, क्यों नहीं, मट्ठी भी खिलाओ और एक प्याली प्याली मिठी भी तो, अगर गालों पर कोई खरोंच नहीं हो।
3: ये क्या कह रहे हैं आप भाई साहब, इतना जोखिम।
0: मैं तुम्हें थोड़ा ही कह रहा हूँ भाभी। अच्छा रमेश तुम्हारा वो टॉयलेट किधर है?
2: वहां पर, वहां तो मैं।
0: अरे कुछ नहीं होगा मुझे तुम्हारे टॉयलेट इस्तेमाल करने से, वैसे भी मुझे हाथ तो धोने ही हैं।
3: जरा इधर तो आना भाई साहब। ये आपने बच्चों को कैसी उल्टी पट्टी पढ़ा दी है, इन्हें कुछ हो गया तो।
0: कुछ नहीं होगा इन्हें भाभी, और हाँ तुम भी रमेश के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जैसे कुछ नहीं हुआ ऐसा तुम्हें करना चाहिए।
3: सब कुछ जानते हुए भी अनजान कैसे बनी रहूं, अब क्या होगा?
0: मैं कुछ नहीं बता सकता, अस्पताल के बड़े डॉक्टर ही बता सकते हैं ऐसा, अच्छी तरह जांच करके। अच्छा मैं चलता हूं, कल ले चलेंगे इन्हें अस्पताल।
3: ठीक है भाई साहब, इनके किए का फल तो भुगतना होगा हमें।

0: ही बदलता हुआ मौसम। शाम तक तो ठीक था मैं, जरा ठंडी हवा लगी नहीं कि खांसी बुखार। हे भगवान, अगर बुखार ना उतरा तो क्या मैं नहीं नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। कल मुझे अस्पताल जाना है, वहां बड़े बड़े नामी डॉक्टर हैं। हाँ, वो बचा लेंगे मुझे, वो बचा लेंगे।
1: क्यों मिस्टर रमेश चंद्र, एड्स के रोगी भी कभी ठीक हुए हैं? उनका इलाज तो मौत है, बस मौत। धीरे धीरे दबोचती, धीरे धीरे दबोचती, पंजे कसती, लंबी मौत, धीमी मौत, धीमी मौत।
0: नहीं नहीं नहीं, मैं जीना चाहता हूँ, भरपूर जीना चाहता हूँ। अरे अरे, मेरी उम्र ही क्या है।
1: जवान हो ना, पर तुमने भरपूर जवानी का कैसा दुरुपयोग किया। घर से बाहर रहकर, पत्नी से दूर रहकर, है ना?
0: नहीं नहीं, कौन हो तुम? अंधेरे में छुपकर लांछन लगा रहे हो मुझ पर। जरा जरा सामने तो आओ।
1: बत्ती जलाकर पलंग के दर्पण में देखो, मैं तुम्हारे सामने ही होऊंगा।

0: मैं किसी भी दर्पण में अपना चेहरा नहीं देख सकता। नहीं तो तुमने झूठ बोला था कि तुमने बुखार में सुई लगवाई थी, है ना?
1: झूठ था वो।
0: तो सच क्या था वो भी उगल डालो अब।
1: मैं स्वीकार करता हूं कि जब जब मैं टूर प्रोजेक्ट पर गया तो शराब का नशा और वासना की भूख मुझे अक्सर उस गंदी बस्ती की ओर खींच कर ले जाते थे। कोई भी कैसा भी मादा शरीर नोचने के लिए मैं पागल हो उठता था। हवस का दरिंदा बन गया था मैं।
0: अरे किसने जलाई है ये बत्ती? बुझा दो इसे।
1: कौन?
0: रमा तुम? उफ, ये बदलता हुआ मौसम। शाम शाम तक तो मैं ठीक था, जरा सी ठंडी हवा लगी कि खांसी बुखार। हे भगवान, अगर बुखार ना उतरा तो क्या मैं नहीं नहीं नहीं मैं मरना नहीं चाहता। कल कल मुझे अस्पताल जाना है। वहां वहां बड़े बड़े नामी डॉक्टर हैं, वो मुझे बचा लेंगे। हाँ, वो मुझे बचा लेंगे। क्यों मिस्टर रमेश चंद्र, एड्स के रोगी भी कभी ठीक हुए हैं? उनका इलाज तो मौत है, बस मौत। धीरे धीरे दबोचती, पंजे कसती, लंबी मौत, धीमी मौत।
1: नहीं नहीं मैं जीना चाहता हूं, भरपूर जीना चाहता हूं। अरे अरे मेरी उम्र क्या है?
0: जवान हो ना, पर तुमने भरपूर जवानी का कैसा दुरुपयोग किया है। घर से बाहर रहकर, पत्नी से दूर रहकर, है ना?
1: नहीं नहीं
0: कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम जो अंधेरे में छुपकर मुझ पर लांछन लगा रहे हो, जरा सामने तो आओ। बत्ती जलाकर पलंग के दर्पण में देखो, मैं सामने होऊंगा।
1: नहीं नहीं नहीं मैं किसी भी दर्पण में अपना चेहरा नहीं देख सकता।
0: तो तुमने झूठ बोला कि तुमने बुखार में सुई लगवाई थी, है ना?
1: हाँ, झूठ था वो।
0: तो सच क्या है अब वो भी उगल दो।
1: हाँ स्वीकार करता हूं मैं कि जब जब मैं टूर प्रोग्राम पर जाता था तो शराब का नशा और वासना की भूख मुझे अक्सर उस गंदी बस्ती की ओर खींच कर ले जाते थे। कोई भी कैसा भी मादा शरीर नोचने के लिए मैं पागल हो उठता था, हवस का दरिंदा बन जाता था मैं।
0: अरे किसने किसने बत्ती जलाई? बुझा दो इसे।
2: वाह वाह,
0: कौन?
2: बाढ़ नियंत्रण विभाग में बांध बनाने वाला विवाहित इंजीनियर अपनी वासनाओं पर काबू ना पा सका। बहुत खूब, शाबाश।
0: हो रमा, तो सुन लिया तुमने सब कुछ?
2: जिस बात का मुझे शक था ठीक ही निकली।
0: मैं तो तेज बुखार में जाने क्या क्या बक गया, और तुमने उसे सच मान लिया।
2: अब भी झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती?
1: मुझे माफ कर दो रमा। लगता है हर इंसान के अंदर एक जानवर भी होता है जो घर के खूंटे की सीमा से बाहर जाकर इधर उधर मुंह मारने लगता।

0: है कभी कभी।
1: तुमने ये नहीं सोचा रमेश कि मैं भी तो अकेली रहती थी इतने बड़े घर में तुम्हारे बिना।
0: पर तुम्हारे साथ बच्चे तो होते थे ना रमा, और मैं उस बीहड़ इलाके में अकेला।
1: साधु संत और योगी मुनि भी तो जंगलों में अकेले रहते हैं, वो भी तो नियंत्रण रखते हैं भीतर की बाढ़ पर।
0: काश काश हर इंसान संत बन सकता।
1: शायद तुम ठीक कहते हो, हर इंसान संत नहीं बन सकता। रमेश, एक अपराध मुझसे भी हुआ है, क्या क्षमा कर सकोगे तुम मुझे?
0: कैसा अपराध?
1: मैं भी अपने भीतर कितने दिनों तक वासना की बाढ़ को थामती।
0: तो क्या किया तुमने?
1: एक रात मेरा भी बांध टूट गया।
0: ओह, कब, कैसे, किसके साथ, कौन आया था यहां?
1: इतने सारे तीर एक साथ?
0: बताओ बताओ मुझे, बताओ मुझे, वरना मैं पागल हो जाऊंगा।
1: मैं तो नहीं हुई पागल, फिर भी बताई देती हूँ तुम्हें। तुम्हारे जाने के बाद लक्की को बुखार हो गया था। रात को उसे देखने एक डॉक्टर आता था।
0: क्या, डॉक्टर गुप्ता, जिसे तुम भाई साहब कहती हो? शर्म नहीं आई तुम्हें?
1: तुम्हें नैतिकता के ढोल पीटने का अधिकार नहीं रहा रमेश।
0: ओ, तभी खूब घुल घुल कर साथ सट सट कर बातें कर रही थी उस कमीने से।
1: ये तुम कह रहे हो? जिसके अपने शरीर में गंदी नालियों के कीड़े रेंग रहे हैं। असल में तुम्हारा दिमाग भी रोगी हो गया है।
0: क्या मतलब है तुम्हारा?
1: मैंने जरा सा नाटक किया और तुम सच मान बैठे? जरा सा भी विश्वास नहीं किया अपनी पत्नी पर? वाह रे मर्द वाह।
0: क्या, तो ये सब झूठ था, नाटक था?
1: हाँ, लेकिन तुम्हें एड्स होना एक ठोस नंगी सच्चाई है, समझे तुम?
0: हाँ, सचमुच एक कठोर सच्चाई जिसने मुझे एक ही दिन में तोड़ कर रख दिया है। क्या मुझे मेरे नंगे अपराधों के लिए माफ कर सकोगी रमा?
1: वो तो कर दिया है मैंने, और चारा भी क्या था मेरे पास?
0: मैंने बहुत बुरा किया है रमा, जो तुम जैसी देवी को धोखा दिया, शराब पी, रिश्वत खाई, घोटाले किए। इस खूंखार पक्षी को चुप कराओ, इसे चुप कराओ रमा, इसकी आवाज मुझे अंदर तक चीरे जा रही है, चुप कराओ इसे।
1: चुप हो जाएगा काले अंधेरों का ये मनहूस पक्षी भी एक दिन, और तब सन्नाटा छा जाएगा यहाँ, घोर सन्नाटा।
2: मम्मी मम्मी, हमें छोड़कर क्यों चली आई तुम?
3: ये कैसा पक्षी है मम्मी, जो लगातार चीख ही जा रहा है?
2: इसके कारण हमारी नींद भी टूट गई।
1: आओ बच्चों, यहीं आ जाओ, आज रात हम यहीं सोएंगे सब एक साथ।
2: वाओ, मैं तो पापा के साथ सोऊंगी।
3: नहीं नहीं, मैं सोऊंगा पापा के साथ, मम्मी कहो ना इसे।
1: तुम दोनों सोओगे अपने प्यारे प्यारे पापा के साथ।
0: ओह, थैंक यू रमा। आओ बच्चों, आओ मेरे पास, बत्ती बुझा दो रमा, अब मुझे गहरी नींद आएगी, मेरा प्यारा घर, प्यारा घर। तबीयत भी कुछ ठीक हो गई लगती है अब।
1: बच्चों, सो जाओ तुम चुपचाप, पापा को तंग नहीं करना।
2: पापा, मेरी तरफ मुंह करो।
3: नहीं नहीं पापा, मेरी ओर।
0: आओ मेरे बच्चों, आओ पिंकी, लक्की।
3: हाय पापा, मेरा हाथ।
1: क्या हुआ लक्की, क्या हुआ?
2: मम्मी

0: रमेश, ये क्या किया तुमने?
1: रमा,
0: क्या किया?
1: रमा, रमा, मैं तो अपने बच्चे की हथेली पर प्यार का बीज बो रहा था।
0: नहीं, पर तुम्हें ये तो मालूम था कि तुम्हारे शरीर में अब मौत के अंधेरों ने अपने बीज बो दिए हैं।
1: हे भगवान,
0: ते मेरे बीज, और वो बीज अब नहीं, नहीं,
1: रमा, नहीं। पिंकी, पिंकी।
2: अभी आप सुन रहे थे नाटक तिमिर बीज। नाटक के लेखक थे अमृतलाल मदान, संयोजक राकेश कपिला और प्रस्तुति श्याम गुप्ता। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत के फरमाइशी कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को आपके दोस्त सुशील कुमार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप हमें पत्र लिखते हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पत्रों को इस कार्यक्रम में हम शामिल करें और आपको सुनवाएं आपके पसंद के गीत। तो जो श्रोता हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, आप भी हमें पत्र लिख सकते हैं। कृपया हमारा पता नोट कीजिए, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रोहतक, रोहतक का पिन कोड 124001 लगाना ना भूलें। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म आर पार से गीता दत्त की आवाज़ को। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है ओपिनैयर ने। और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजिए आप सभी ने, आप हैं अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गव्या, सुचा पाठक, वाशिम महाराष्ट्र से ऋचा वसमतकर, सोनाली पाठक, संगीता पांडे, अश्विनी कुलकर्णी, कल्पना पांडे, सुनीता पांडे, मालती, संगीता, उषा, छाया, तृप्ति, विशाखा, माधुरी, रेणु, जीतू, लचनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और आरू साहू।

ये पत्र हमें भेजा है आप हैं छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से, राजेश पाटिल, राजदीप राशि शीतल, मलोट पंजाब से आप हैं राजकुमार इंदौरा, बिमला इंदौरा, गौरी इंदौरा, विकास इंदौरा, प्रियंका इंदौरा, रमन इंदौरा, रितु, भविष्य खन्ना, मिशेल खन्ना, किन्शुक खन्ना, दीपांशी इंदौरा, अलीका डब्बाली से बसंत सिंह चन्न, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी, और रिंगणी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप सभी सुनना चाहते हैं यहूदी फिल्म से मुकेश की आवाज़ को। गीत शैलेंद्र का लिखा हुआ है और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

आप हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित मोहित, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगनानी, नरेंद्र तनेजा, किरण ठाकुर, सुनीता जैन, धामणी मानेरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश इब्बार, अमोल डेरे, गुलशन डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे, आप सभी सुनना चाहते हैं सीमा फिल्म से मन्ना डे की आवाज़ को। गीत शैलेंद्र का लिखा हुआ है और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

ये पत्र हमें मिला है डीएलएफ कॉलोनी रोहतक से। महेंद्र शाह, हरिंद्र शाह, जितेंद्र शाह, मानसी शाह, हर्षित शाह, संबलपुर कांकेर से आप हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, ईशिका यादव, तेजल यादव, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म भाई भाई से गीता दत्त की आवाज़ को। गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

गूंज उठी शहनाई। श्रोताओं लीजिए सुनिए इस फिल्म से लता मंगेशकर, गीता राय और साथियों की आवाजों को। गीत के बोल लिखे हैं भरत व्यास ने और संगीत दिया है वसंत देसाई ने। और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजिए आप सभी ने। आप हैं पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से आप हैं गुरविंदर सिंह पांडा, इंद्रजीत कौर, मनमीत, मनविंदर सिंह पांडा। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से आप हैं हरदेव मिका, बलविंदर वीरक, जयतेग वीरक।

आप हैं डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से, राष्ट्रपाल गज भी है, राधिका गज भी है, अनिष्का तन्मय गज भी है, नया पारा भी रही से, बसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज सूर्यवंशी, ईश्वर राज सूर्यवंशी, चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्राची टीयूषी सूर्यवंशी, मुक्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलजिंद्र कौर धीमान, रवनीत निशु, खंडवा से मोहम्मद रफीक पंवार, मोहम्मद साकीब पंवार, मोहम्मद हसनैन पंवार, गांव दीवाल खंडवा से शंकरलाल, वनीता, अशोक, वंदना वाधे, भूपेंद्र वाधे, तनुश्री आरोही और कान्हा वाधे। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म पतिता से हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों को। गीत शैलेंद्र का लिखा हुआ है और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

आप हैं प्रोमिलागंज जालोट रतलाम मध्य प्रदेश से, बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा, बेरड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर, तनु करमरकर, वैष्णव कॉलोनी सनावद से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश कोड़, मोहम्मद शादाब खत्री, बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म प्यासा से गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों को। गीत साहिर का लिखा हुआ है और संगीत दिया है एस डी बर्मन ने।

आप हैं पुणे से, पंकज वाडोदे, आर्या, प्रियंका, मीनाक्षी, रजनी, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गांव कैरो, जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चालोत्रा, सुनीता, रजनी, आकाशदीप, अनहद, गुरशब्द, और गांव बलियाली जिला भिवानी से आप हैं दर्शन लाल बंसल, सुदेश बंसल, प्रवीण बंसल, ममता बंसल, कमल बंसल, गर्विश बंसल और तमन्ना बंसल। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म पेइंग गेस्ट से किशोर कुमार की आवाज़ को। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ है और संगीत दिया है SD बर्मन ने।

आप है गांव खैर का, जिला सिरसा से। इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, सरगुन, हनी, मसीता डबवाली से दर्शन लोट, इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, नथना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता, गीता, छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद फूलवाले, दुखना फूलवाले, सदा कारजू, जूही इकबाल फूलवाले, आमना, इमरान अहमद फूलवाले, गांव गोविंदगढ़ माझीवाल श्री करणपुर राजस्थान से आप हैं राजू टूटेजा, उर्मिला टूटेजा, आदित्य, भूमि राखी, अमृत, शिव सेठी, करणपुरी। आप सभी सुनना चाहते हैं मधुमती फिल्म से लता मंगेशकर को। गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और संगीत दिया है सलिल चौधरी ने।

आप हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, करण, पलक, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश बत्ता। मलोट कैंप पंजाब से आप हैं रमेश मिघलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरुचरण ग्रोवर, रमेश मिघलानी। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्राजक्ता, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सोमनाथ, जालना से नामदेव भूतेकर, अभिषेक भूतेकर, गणेश भूतेकर, कार्तिक भूतेकर, अश्वनी, जलगांव से वैष्णवी, हर्षुल, औरंगाबाद से वैभव, गौरव, मेघराज, युवराज। आप सभी सुनना चाहते हैं चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों को। गीत हसरत जयपुरी का लिखा हुआ है और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

आप है भाटापारा दत्तरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, निवान शर्मा, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, और राजनगर मधुबनी से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि गुप्ता, मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक पंखुरी, मंजीत सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी गुप्ता, कोमल, मेनका गुप्ता, माधवी, साध्वी, तन्मय राज और गुनगुन। आप सभी सुनना चाहते हैं सुजाता फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ को। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ है और संगीत दिया है SD बर्मन ने।

अभी आप सुन रहे थे पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम में भूले बिसरे गीत। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। इस समय रात के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: Ravi Kapoor. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। IX पोर्टल, MyIRINN पोर्टल, .IN ऑक्शन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability, and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation, and uphold the highest standards of quality. He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come. Mr. Modi said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and the industry.
1: Pradhan Mantri Viksit Bharat Yojana ke sahyog se ab tak kareeb 70 lakh job srujit hui hai. Kareeb 20 lakh yuva अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे